हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तिथि तृतीया, तदनुसार दिनांक 31 अगस्त 2026। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का दैनिक प्रसारण सुप्रभात।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हिंदी में समाचार के लिए आइए अब हम आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र पर। थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का यह चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोता, स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन। विषय है भ्रष्टाचार से बचे।
3: रामकृष्ण परमहंस परस्पर चर्चा में शिष्यों को बता रहे थे, मनुष्यों में कुछ देवता पाए जाते हैं, कुछ सामान्य कोटि के मनुष्य ही, और शेष तो नरपिशाच ही होते हैं। नरेंद्र जो

0: बाद में स्वामी विवेकानंद बने ने पूछा, भला इन नरपिशाचों मनुष्यों और देवताओं की पहचान क्या है? परमहंस ने कहा, वे मनुष्य देवता हैं जो दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाने के लिए तैयार रहते हैं। मनुष्य वे हैं जो अपना भी भला करते हैं और दूसरों का भी, और नरपिशाच वे हैं जो दूसरों की हानि ही सोचते और करते हैं, भले ही इस प्रयास में उन्हें स्वयं ही हानि सहनी पड़े। सदाचार मनुष्य को देवता भले न बना सके, नरपिशाच होने से उसे बचाए रखता है। नगर में सेठ जी की दवा की दुकान थी। दुकान खूब चलती थी। देखते ही देखते सेठ जी की नगर के प्रतिष्ठित धनी व्यक्तियों में गिनती होने लगी। दलालों के माध्यम से उन्होंने ये प्रचारित कर दिया था कि उनकी दुकान में दवा के मूल्य में छूट मिलती है जो किसी दूसरी दुकान में नहीं। सेठ जी अपने नगर में महीने में कुछ ही दिन रहते थे, दूसरे बड़े बड़े नगरों का दौरा लगा ही रहता था। एक बार ऐसे ही दौरे में कुछ दिनों के लिए वे अपने नगर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच उनका युवा लड़का बीमार पड़ गया। सेठ जी की पत्नी ने घबराकर डॉक्टरों की टोली घर बुला ली। डॉक्टरों ने रोग का निदान किया, इंजेक्शन और खाने की दवा लिखकर मरीज को कब कब दवा देनी है समझाकर वे चले गए। सेठ जी की पत्नी ने सारी दवाइयां अपनी दुकान से मंगाकर देनी आरंभ कर दी, किंतु उनके पुत्र की हालत बिगड़ती ही गई। अंत में डॉक्टर फिर बुलाए गए। उन्हें आश्चर्य हुआ, दवाओं से लाभ क्यों नहीं हुआ? दवाओं की जांच से पता चला कि ये सब नकली है। दूसरी दुकान से दवाएं लाकर दी गईं, किंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। सेठ पुत्र को बचाया न जा सका। बाद में पुत्र शोक से आकुल व्याकुल सेठ ने स्वीकार किया कि वे नकली दवाओं का धंधा करते थे, जिसका फल ईश्वर ने उन्हें दे दिया। भ्रष्टाचार से अपनी उन्नति करने वाले भूल से ये समझ बैठते हैं कि इससे बुराई समाज के अन्य लोगों की हो रही है और उनकी तो उन्नति हो रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति की धनाशक्ति उसे ये सोचने ही नहीं देती कि इस धन का उपयोग करने वाला कौन है। भ्रष्टाचार के कारण हम आत्मा की रक्षा नहीं कर पाते। गांव का एक दुकानदार गरीबों को उधार सौदा देता था और अपनी बही पर मनमाने ढंग से दिगुना तिगुना मूल्य लिखकर गरीबों को फुसला फुसला कर उसे वसूलता था। सूद पर जो रुपये कर्ज देता था, उसे भी गांव वालों से दुगुने तिगुने रुपये का कागज बना बनाकर उनके अंगूठे का निशान लगवाकर कानूनी तौर पर अपना दावा पक्का कर लेता था। अपने मूलधन से कई गुना रुपये दुकानदार को देने के बाद भी गांव के गरीबों का कर्ज चुकता ही न था, और उधर बनिए के घर सोना बरसता था। एक दिन रात में दुकानदार के घर में अचानक आग लगी। उसकी पुकार पर गांव वाले जुटे। बार बार दुकानदार गांव वालों से अपने उन दोनों बक्सों को लाने के लिए कहता रहा जिनमें आभूषण और कर्ज के कागजात थे। गांव वालों ने बड़े परिश्रम से जान की परवाह न कर दोनों बक्से निकाल दिए। बाद में दुकानदार को होश आया कि उसका 5 वर्ष का इकलौता बेटा तो घर में खाट पर सो रहा है। लड़का गंभीर रूप से जल जाने पर निकाला जा सका और चिकित्सा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भ्रष्टाचारी पहले तो खूब उन्नति पाता है, शत्रुओं पर विजय भी पाता है। उसे लगता है कि उसकी बुराई तो हो ही नहीं सकती, किंतु निश्चित रूप से अंत में उसका समूल विनाश होता है। गुरु नानक ने पाप की कमाई की रोटी से खून टपका कर और परिश्रम की रोटी से दूध निकालकर ये संदेश दिया था कि भ्रष्टाचार से बचने में ही हमारा कल्याण है। भ्रष्टाचार ऐसी जहरीली गैस है जो अपने बनाने वाले को भी अपनी गोद में समेट लेती है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भ्रष्टाचार से बचे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान के आज के अंक का संगीत में पाठ,
1: एपिसोड नंबर 78। 7-8

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान के आज के अंक का संगीतमय पाठ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब हम आपको बता दें आज के हमारे शेष प्रसारित होने वाले

अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे 7:00। 7:20 पर कार्यक्रम विविधा का प्रसारण किया जाएगा। गीत संगीत 7:30 पर। समाचार प्रभात 8:00। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। 9:00 से लेकर 10:00 तक आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 10:00 आप सुनेंगे हेलो हजारीबाग। विविध भारती से आप जुड़ेंगे 11:00 से 1:10 तक। 1:10 से 1:20 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। विविध भारतीय प्रसारण सेवा से एक बार फिर आप जुड़ेंगे 1:20 से लेकर 2:55 पर। 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का आज का अंक। प्रादेशिक मुख्य समाचार 5:00 से 5:02 तक। इवनिंग मेलोडी 5:02 पर। कार्यक्रम खेती बारी का प्रसारण किया जाएगा 5:30 पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार 6:00। 6:02 पर श्रोताओं आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम आंगना। 6:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रादेशिक समाचार 7:00। 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। आपकी योजना कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 7:15 पर। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिए 7:30 पर। अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे आपकी चाहत 8:00। समाचार संध्या 8:45 पर। 9:00 न्यूज एट 9 स्पॉटलाइट 9:15 पर। 9:30 पर आप जुड़ेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। एक फिल्म से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 10:30 पर। हिंदी समाचार 11:00। 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। और आज की हमारी सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर।

श्रोता, अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के हमारे शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन त्रिंशदुत्तर द्विसहस्र वर्षं यावत् पञ्चार्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यदि साम्प्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननमपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय

0: योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोरेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलियर दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ सम्बन्धेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निज सम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्यनेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68+700 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसि सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 86+8,000 जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27,200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणाम् 80% स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुमद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतन वृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तर क्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर, खेजर, मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। श्रोता स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोकरंग।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता, जीवन में संगीत का प्रभाव। वार्ताकार हैं विजय कुमार दुबे।

हम कहीं से पलटते हैं तो कोई अध्याय ऐसा नहीं जिसे संगीत से सुन्न कह दिया जाए। मनुष्य जन्म लेते ही गीत सुनता है। आज मोहे अंगनवा जन्म ले ले होरिलवा। बच्चों के जन्म लेते ही माताएं सोहर गीत गाना शुरू कर देती हैं। मृत्यु होने पर भी गीत सुनते सुनते श्मशान तक की यात्रा करता है। उसे घंटे घड़ियाल और राम नाम सत्य है के ध्वनियों के साथ उसके स्थूल शरीर को शून्य में विलीन कर दिया जाता है। इस मानव का शरीर पांच तत्वों के मिलने से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर मानव शरीर का निर्माण होता है और यही तत्व जीवन के आधार माने जाते हैं। इनमें से किसी एक की कमी होने पर जीवन लीला समाप्त हो जाती है। समस्त जड़ चेतन का मूल आधार इन्हीं पांच तत्वों पर आधारित है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि इन पांच तत्वों में संगीत मौजूद है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति संगीतमय वातावरण एवं संगीतमय तत्वों से परिपूर्ण है। संगीत आत्मा का मूल आधार है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप होता है। जिस प्रकार आत्मा का संबंध परमात्मा से माना जाता है, उसी प्रकार स्वर का संबंध आत्मा से है। इससे संगीत और आत्मा का संबंध प्रमाणित होता है। इस सृष्टि का कोई भी प्राणी हो, संगीत से अछूता नहीं हो सकता। कहावत है कि गाना और रोना सभी को आता है। जो व्यक्ति अपने विवेक अभ्यास से स्वर ताल पर अपना अधिकार कर लेता है, उन्हें समाज में आदर भाव से देखा जाता है। उन्हें गवैया की पदवी दी जाती है। परंतु जो संगीत साधना में नहीं रहते, वो भी गायक से कम नहीं है। गांवों में गाने वाले लोक गीतों के विभिन्न प्रकार प्रचलित होते हैं, जैसे कपड़े धोते समय धोबियों का गीत, खेतों में पानी की सिंचाई करते समय किसानों का गीत, पशु चराते समय चरवाहों का संगीत, जिसे बिरहा भी कहते हैं, उस साधक से कम नहीं है। संगीत मानव जीवन के दिनचर्या में समाहित है। जैसे विवाह, जन्मोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान या सार्वजनिक समारोह अन्य जगहों पर, इस संसार में संगीत का जादू जैसा असर है। पावस की लाजवंती संध्याओं की श्वेत श्याम मेघ मालाओं से प्रस्फुटित नन्ही नन्ही बूंदों का रिमझिम रिमझिम राग सुनते ही कोयल कूक उठती है, पपीहे गा उठते हैं, मोर नाचने लगते हैं। कृषक लहलहाते फसलों को देखकर अचानक अलाप ले उठता है। काल रूप विषधर भी बीन की स्वर लहरियों में खोकर सपेरा की पिटारी में बंदी बन जाता है। मनुष्य जीवन पथ के सभी मोड़ पर अनेक प्रकार के संगीत प्राप्त करता है। युद्ध के मोर्चे पर उत्साह वृद्धि के लिए विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के सैनिक विभिन्न प्रकार के संगीत का ही प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, चारित्रिक उत्थान एवं वासनाओं पर

जीवन में संगीत का प्रभाव। सृष्टि के स्वर्णिम बिहान से लेकर प्रलय की काली संध्या तक संगीत का महत्व मानना ही पड़ता है। जीवन रूपी ग्रंथों को

0: विजय प्राप्त करने का उत्तम साधन संगीत है। संगीत की गहराई मापी नहीं जा सकती। मनुष्य ज्यों ज्यों इसकी गहराई में उतरता, उसे और अधिक व्यापक बड़ा दिखाई पड़ता है। इसमें रुकने का एक ही माध्यम है, साधना का पथ, अर्थात रियाज करना, प्रैक्टिस करना। प्रसन्नता की बात यह है कि आजकल विश्व के कुछ विशेषज्ञ एवं डॉक्टर संगीत के रहस्यपूर्ण तत्वों के खोज में लगे हैं, जिससे लोगों में इसके प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में मानसिक रोगों पर पक्षघात अथवा कॉलिस के रोगियों पर संगीत की स्वर लहरियों का अचूक प्रभाव दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया के बूमब्रिज, एक प्रकार के जंगली घोड़े, संगीत की सहायता से भारी संख्या में पालतू बन गए। लंदन के एक अस्पताल में गूंगे, बहरे और पागलों पर किए जाने वाले संगीत के प्रयोगों में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान समय में डेनमार्क में गायों को दूहने के पहले उन्हें संगीत सुनाई जाती है, जिससे वो अधिक दूध देते हैं। संगीत के इस प्रभाव से वर्तमान समय में अच्छे अच्छे चिकित्सालयों, अस्पतालों में भी म्यूजिक थेरेपी, संगीत थेरेपी आरंभ हो गया है एवं असाध्य रोगों के लिए रागों का भी चयन किया गया है, जैसे कब्जियत के लिए राग गुणकली अधिक सार्थक है। राग गुणकली का अभ्यास करना, मधुमेह रोगियों के लिए, डायबिटीज रोगियों के लिए राग अहिर भैरव अधिक सार्थक है, जो प्रातःकालीन राग है। हृदय रोग के लिए राग चंद्रकोश काफी सार्थक सिद्ध हुआ है। डिप्रेशन के लिए राग ललित एवं राग पीलू काफी सार्थक है। पैरालिसिस के लिए रागनी भैरवी, यह भी प्रातःकालीन राग है, काफी सार्थक है। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए राग भूपाली, जो संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों का प्रारंभिक राग माना जाता है, यह काफी सार्थक है। भारत के नामी गिरामी अस्पताल भी संगीत चिकित्सा प्रणाली को अपनाने लगे हैं। अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में प्रहलाद के नाम से म्यूजिक थेरेपिंग खोला गया है। नई दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर और मरीजों के कमरों में भी राग आधारित सॉफ्ट म्यूजिक बजाए जाते हैं। एम्स के चिकित्सकों ने भी इस थेरेपी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे रोगियों को आराम मिलता है। अतः संगीत मानव जीवन के धड़कन का स्पंदन है। संगीत मानव जीवन के धड़कन का स्पंदन है, सृष्टि के बिहान का नव किरण है, नव किरण है, नव किरण है। जय संगीत, जय संगीत, जय संगीत।
1: कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे विजय कुमार दुबे को, बता रहे थे जीवन में संगीत का प्रभाव। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज का आज का अंक। 8:30 पर हम अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
4: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में

0: गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
1: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
2: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केउझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
3: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 169 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक

0: वीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112311043 0112311044। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Elishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: After posting 159 for the loss of 9 wickets in the stipulated 20 overs, India bowled silent out for just 65 in 15.3 overs. Nanapat Konchakorai Konkai with 41 runs was Thailand's top scorer but lacked support from the other end as wickets fell at regular intervals. In squash, India's Abhay Singh won the men's singles title at the Tuanku Muriz Trophy 2026 in Seremban, Malaysia yesterday. The top-seeded Abhay defeated third-seeded Henry Leung of Hong Kong, China 3-2 in the final of the PSA Challenger Tour 15 event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed Prime Minister's visit to the Central Asian country of Uzbekistan. The Hindu headline writes, India-Uzbekistan upgrade ties, agree on uranium deal. The dailies also have an inbox picture of PM Modi being conferred with Uzbekistan's highest honor for foreign leaders in recognition of his leadership and contribution to bilateral ties. PM Modi hails grassroots innovation, anti-drug drive and women's empowerment in Mann Ki Baat program, cites the statesman. As Nepal flood toll mounts, India deploys forensic tunnel rescue teams, notes the Tribune. In a first, railways to build 6 freight lines with private firms using highways hybrid funding model, writes the Indian Express. And finally, Hindustan Times refers to an Army Cheetal helicopter carrying out a daring mission at 18,600 feet in Ladakh to evacuate an injured mountaineer. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत
4: जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
5: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जाँच और उपचार कराएं।
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मिर्जियोव से की वार्ता। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, झारखंड के 6,722 मतदान केंद्रों पर नहीं मिला एक भी फॉर्म 6। नए वोटरों के पंजीकरण में तेजी का दिया निर्देश। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में बड़ा खुलासा। यूपी की तर्ज पर तैयार हुआ था विशेष सॉफ्टवेयर। गिरिडीह का युवक गिरफ्तार। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया 9 जिलों में जलभराव का अलर्ट। और झारखंड स्टेट फेंसिंग चैंपियनशिप में रांची ओवरऑल चैंपियन, रामगढ़ दूसरे और लोहरदगा तीसरे स्थान पर रहा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उज्बेकिस्तान के ताशकंद में राष्ट्रपति शावकत मिर्जियाओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दो दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर

0: हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: झारखंड के 6,722 मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए अब तक एक भी फॉर्म 6 प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पात्र युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने और ऐसे मतदान केंद्रों की विशेष समीक्षा करने पर निर्देश दिया है। फॉर्म 6 के आवेदन 15 सितंबर तक लिए जाएंगे। खूंटी जिले के सिल्दा गांव में SIR को लेकर जागरूकता और सुधार कार्य तेज कर दिया गया है। मिसमैच नामों और अन्य त्रुटियों के समाधान के लिए 2 सितंबर को राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिल्दा के बूथ नंबर 88 पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। BLO रुक्मणी देवी ग्रामीणों को नोटिस देकर आवश्यक दस्तावेज और जानकारी जुटा रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने JPSC गड़बड़ी मामले में आरोप लगाते हुए कहा है कि यह 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला है।
2: सरकार राज्य के अंदर फाइनेंशियल क्रंच की ओर है, रूल ऑफ लॉ कॉलेप्स हो चुका है। झारखंड के अंदर बच्चों का आंदोलन 25 दिन चला और मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और JMM के ऐसे बड़े लोग जो इस घोटाले में फंसे हुए हैं, जो भविष्य बेचने का काम किया है, 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला है ये।
1: राज्य में JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने कई अहम खुलासे किए हैं। पूछताछ में पीकर टेक्नोलॉजी के निदेशक हेमंत वर्मा ने बताया कि यूपी विधान परिषद RO/AR/O परीक्षा की तर्ज पर JPSC के लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। जांच के अनुसार सॉफ्टवेयर और बैकएंड के जरिए OMR शीट की स्कैनिंग के दौरान बारकोड और अंकों में हेरफेर की योजना थी। वहीं CID ने कार्रवाई करते हुए गिरिडीह के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू में सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और रील्स पोस्ट कर दबदबा दिखाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मार्च 2026 के बाद ऐसे मामलों में 6 से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया गया है। अगस्त में शुरू ऑपरेशन सफाया के तहत पुलिस ने 851 संदिग्धों की सूची तैयार की और अब तक 29 से अधिक अवैध हथियार बरामद किए हैं। SP कपिल चौधरी ने बताया कि सोशल मीडिया का गलत उपयोग करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
3: युवक हैं जो कि सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी गलत तरीके से फोटो अपलोड करते हैं, तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कार्रवाई करने से, इस प्रकार के शो ऑफ करने से कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। तो आप लोगों से यही अपील मेरी रहेगी कि इस तरह अपना शो ऑफ करने के चक्कर में अपना इस प्रकार हथियार का प्रदर्शन नहीं करें।
1: झारखंड में अच्छे आचरण वाले बंदियों के पुनर्वास के लिए ओपन और सेमी ओपन जेल व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। पात्र बंदियों को परिवार के साथ रहने के साथ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जेल से बाहर जाकर नौकरी करने और आजीविका कमाने का अवसर मिल सकता है। जेल IG सुदर्शन मंडल के अनुसार इसका उद्देश्य बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।
4: हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है, झारखंड के 4 जिलों में सेंट्रल जेल में चिन्हित किया है। इसमें केंद्रीकारा हटोरा, धारीडी सेंट्रल जेल, झुमका सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल में चिन्हित करके भारतीय ओपन खोलने का प्रस्ताव द्वारा दिया गया।
5: ओपन एक

0: सुधारात्मक है यार, ये नहीं है, ये है कि सुधार के लिए उसे बहुत दिनों से जो अंदर में सीमित है उसे पब्लिक से मिलने जुलने काम धाम करने एक अवसर दिया जाता।
1: हजारीबाग संघ कार्यालय में राष्ट्रीय सेविका समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें नगर क्षेत्र की करीब 40 महिलाओं ने भाग लिया। टंडवा की बबीता और चतरा की वर्षा रानी ने समिति की कार्य पद्धति, उद्देश्य और समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका की जानकारी दी। कार्यक्रम में ध्वज स्थापित कर समिति की प्रार्थना भी की गई। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने छात्रवृत्ति का सदुपयोग करते हुए शिक्षा और भविष्य निर्माण पर ध्यान देने की अपील की। उपायुक्त ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने और अनुशासन के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब अच्छी तरह चिन्हित निम्न दबाव में बदल गया है, जिसके असर से अगले 24 घंटे में झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू, गढ़वा और चतरा में जलभराव का अलर्ट जारी किया है, जबकि आज से 2 सितंबर तक रांची में बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर प्रखंड में कल शाम वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोक्षो फुटबॉल मैदान में मैच के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से वीर सिंह कालुंडिया गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रांची जिला की टीम ने झारखंड स्टेट फेंसिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। रांची में आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्यभर के खिलाड़ियों ने फाइनल ईपी और साइबर स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। रामगढ़ की टीम दूसरे और लोहरदगा की टीम तीसरे स्थान पर रही। विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मिर्जियोव से वार्ता की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, झारखंड के 6,722 मतदान केंद्रों पर नहीं मिला एक भी फॉर्म 6। नए वोटरों के पंजीकरण में तेजी का दिया निर्देश। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में बड़ा खुलासा। यूपी की तर्ज पर तैयार हुआ था विशेष सॉफ्टवेयर। गिरिडीह का युवक गिरफ्तार। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया 9 जिलों में जलभराव का अलर्ट। और झारखंड स्टेट फेंसिंग चैंपियनशिप में रांची ओवरऑल चैंपियन रामगढ़ दूसरे और लोहरदगा तीसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आपके साथ है।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

फिल्म का नाम नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे का गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

और श्रोताओं, कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में धरती कहे पुकार के फिल्म का गीत।

तो श्रोताओं, ये था आज का मॉर्निंग मेलोडी, जिसका सफर आपने तय किया अपने दोस्त सुनील के साथ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि कार्यक्रम चल रहा था चित्रलोक, और आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज है अमृता प्रीतम का जन्मदिन। अमृता प्रीतम हिंदी और पंजाबी साहित्य की महान कवित्री, लेखिका और उपन्यासकार थी, और आज ही उनका जन्मदिन है। उन्होंने अपने साहित्य में प्रेम, विरह, स्त्री मन और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से अभिव्यक्त किया, जो कि उनकी रचनाओं में दिखता भी है। उनकी प्रसिद्ध कविता अज आखा वारिस शाहनु विभाजन के दर्द की मार्मिक अभिव्यक्ति है। पिंजर उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे साहित्य की कालजयी कृतियों में गिना जाता है। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट ने साहित्य जगत में विशेष पहचान बनाई। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान मिले। उनकी लेखनी में स्त्री की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व की तलाश प्रमुख रही। अमृता प्रीतम आज भी

सुनहरे दौर के सदा बहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आपने सुना बॉर्डर फिल्म का गाना सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाज़ों में, गीतकार जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर की और संगीतकार अनु मलिक और मिथुन। कार्यक्रम चित्रलोक में समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद फिर आप सभी का स्वागत है।

0: बिनी एंड फैमिली फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज, गीतकार एस संजय त्रिपाठी, संगीतकार ललित पंडित।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना योद्धा फिल्म का गाना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज, गीतकार कुणाल वर्मा, संगीतकार तनिष्क बागीची।

अभी आपने सुना डेढ़ बीघा जमीन फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल की आवाज, गीतकार अर्को और संगीतकार अर्को। तो दोस्तों, समय चितलोक कार्यक्रम का अब धीरे धीरे समाप्त की ओर है। तो आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार, दीजिए कार्यक्रम से इजाजत और सुनते हैं अगले प्रोग्राम को। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे, और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूं छोड़ दो से,

0: juga kan dulu. Betari punya apa dengan dulu? Kata kata dulu sekarang.
1: Iya iya mana? Saya tak sudah biar ibu kami le. Kira lo mereka biar semua orang berkulit cari ini. Lejaiin kau biar nazar ke sana lejaiin.
2: के एन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एन सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहां उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहकल से।

पढ़ाई खत्म करके केएन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया। पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आईं। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है। पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गईं। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के एन सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे। पर एन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन

किया जाना था। चूंकि उनके जीजा जी उपलब्ध नहीं थे और के एन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के एन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के एन सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

के एन सिंह को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदन लाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। के एन सिंह ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने के एन सिंह को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सोनार संसार का हिंदी संस्करण बना रही थी। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए के एन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदन लाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। A.R. कारदार को कुंदन लाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और के एन सिंह जम गए। के एन सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलकें न झपकाना, कोट पैंट टाई हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के एन सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

0: अपने इंटरव्यूज में वो जग्गा डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भूलू का किरदार निभाया था।
1: क्या बोलो?
2: कैसे
1: इतने समय कैसे आ गए?
2: चल मेरे साथ चल।

0: जल्दी चल।
1: लेकिन बात क्या है?
0: अरे उठ तो सही, जल्दी चल।
1: अरे मुझे अपने पाँव से चलने दे, मैं खुद चलूंगा। अरे जिंदा तो है अभी। देख पंजनारे के 8-10 फूल तोड़ ला और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा। लेकिन देख बूटी जा चुका कर लाइयो। हाँ जल्दी से आ।

0: भाई ये काम तो खत्म हो जाए, तू जरा अच्छी तरह से ध्यान रखियो, ये लिप सूख जाए तो और लगा देना। मैं शाम को आऊंगा, जरा मेरा हाथ उड़ाइयो भाई।
1: मगर कहाँ जाओगे वे जी से इस तरह छोड़कर?
0: नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ, अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया।
2: नगीने शादी?
1: बैद जी, बैद जी, बैद जी,
0: अरे कुछ कहेगा भी?
2: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती।
0: अरे जालिम, तुझसे शादी करके कौन अपने हड्डियों को चूर कराएगी?
2: अभी पक्की नहीं तो कच्ची शादी करा दो, क्यों बैद जी?
0: अच्छा अच्छा, इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे, तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी।
3: बैद जी, अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हरज
0: है? ठीक है भेज देंगे।
2: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी?
0: बस ये कोई 15-20 दिन।
2: बैद जी, भगवान भी कुछ जरूर है,
0: तो?
2: देख लो, दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहु मेरे लिए।
0: हाँ भाई, सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी।
3: बैची है तो बड़ी खूबसूरत, क्यों?
0: हाँ भाई, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो कोका के परी को उठा लाए।
4: शक्ति सामंत को के एन सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई ना कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर, बद्री प्रसाद की भूमिका। फिल्म हावड़ा ब्रिज, प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, के एन सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के एन सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर के एन सिंह एक चोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अजय सुना सरदारा की आल है।

0: अरे वाह, अरे वाह वाह वाह वाह।
1: शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के एन सिंह की यादगार फिल्म है।

चिन्नप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे उन फिल्मों के गाने जिनमें के एन सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में। जहां कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरु दत्त के साथ काम किया, वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई। यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे बीमारी

की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के.एन. सिंह की आखिरी फिल्म बन गई।

0: शूद आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता।

0: बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे।
3: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
4: 10, 9, 8, 7, 6

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा। डे टू डे हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे तमाम श्रोताओं को सुनील का प्यार भरा नमस्कार।

0: पत कभी कभी।
1: दोस्तों, मनुष्य किसी दुखद घटना को लेकर इतना व्याकुल रहता है कि उसे अपना दुख सबसे कष्टदायक लगता है। पीड़ा आती है, कोई संबंध टूटता है, कोई प्रिय वस्तु हाथ से चली जाती है, कोई स्वप्न अधूरा रह जाता है और जीवन अचानक उस अनजानी दिशा में मुड़ जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। तब मन के भीतर सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस प्रश्न के भीतर मनुष्य का समूचा अहंकार छिपा हुआ है। उसमें एक सूक्ष्म हट है कि जीवन वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने सोचा है, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए, सुख हमें मिलना ही चाहिए। हालांकि जीवन का अस्तित्व मनुष्य की इच्छाओं से संचालित नहीं होता। जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, चेतना के जागरण की यात्रा है। हम ईश्वर से सुख मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, परंतु ईश्वर यदि हमारे जीवन को केवल हमारी इच्छाओं के अनुसार चलाए तो हमारी चेतना का विस्तार कैसे होगा। बालक को माता पिता की गोद प्रिय होती है, किंतु माता पिता उसे सदैव गोद में नहीं रखते, वे उसे गिरने देते हैं, स्वयं उठने देते हैं। अतः जो हमें दंड प्रतीत होता है वह शिक्षा भी हो सकती है।

जो हमें विवेक प्रतीत होता है वह वैराग्य का आरंभ हो सकता है, जो हमें अंत प्रतीत होता है वह किसी गहरी यात्रा का प्रथम चरण भी हो सकता है। जीवन का सबसे गहरा प्रश्न यह नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि उसके बाद मेरे भीतर क्या घटित हुआ। वस्तुतः यह मेरे साथ ही क्यों हुआ के स्थान पर पूछा जाना चाहिए। इस घटना के माध्यम से मुझे क्या समझना है, पहला प्रश्न हमें पीड़ित बनाता है, दूसरा हमें साधक बनाता है। जब आर्तनाद साधना में बदलता है तब दुख पीड़ा नहीं रह जाता, वह सत्य का द्वार बन जाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है जब जीवन हमारी समझ से बाहर हो जाए तब भी हम ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें।

और श्रोताओं, ये थोड़ी चर्चा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था यह अभियान, जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त बनाना है। अभियान के मुख्य बिंदुओं पर गौर करें तो मुख्य लक्ष्य है वर्ष 2026 तक बाल विवाह के मामलों में 10% की कमी लाना और 2030 तक देश से इस कुप्रथा का पूर्ण उन्मूलन करना। यह अभियान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और सतत विकास लक्ष्य 5.3 के अनुरूप है। 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान के तहत पहले चरण में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाद विवाद व निबंध प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियां, दूसरा चरण धार्मिक नेताओं, समुदाय के प्रभावशाली लोगों और विवाह सेवा प्रदाताओं को जोड़ना है, और इसका तीसरा लक्ष्य है, तीसरा चरण है, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रेरित करना है।

और श्रोताओं, आइए इतिहास के पन्ने उलटते हैं और देखते हैं कौन कौन सी घटना घटी थी आज के दिन यानी 31 अगस्त को। सन 1920 अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में रेडियो पर पहली बार समाचार प्रसारित किया गया। 1956 में आज ही के दिन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी थी। और श्रोताओं, 1968 में आज ही के दिन भारत में टू स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। और श्रोताओं, 1983 में आज ही के दिन भारत के उपग्रह इनसेट 1B को अमेरिका के अंतरिक्ष शटल चैलेंजर से प्रसारित किया गया। आज ही के दिन ब्रिटेन की राजकुमारी और राजकुमार चार्ल्स की पूर्व पत्नी डायना की पेरिस में कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। साल था 1997। और श्रोताओं, आज जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों ने जन्म लिया था, 1931 अगस्त अमृता प्रीतम, प्रसिद्ध कवित्री, उपन्यासकार और निबंधकार। पल्लम राजू एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, 1962 में आज ही के दिन जन्मे थे। ऋतुपर्ण घोष बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता, आज ही के दिन पैदा हुए थे 1963 में। शिवाजी सावंत मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, 1940 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। और श्रोताओं, आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के दिन किन लोगों ने हमें अलविदा कहा। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे थे, 2020 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। विजय शंकर मल्ल, उन्होंने भारतेंदु काल के गद्य को हंसमुख गद्य की संज्ञा दी थी, 2003 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। गोपाल स्वरूप पाठक भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, 1982 में आज ही के दिन यानी 31 अगस्त को उनका निधन हो गया।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम में एक और संदर्भ, सौर ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा, हरित भविष्य की ओर एक कदम विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि ऊर्जा के साधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल और लकड़ी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। एक न एक दिन ये खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन यदि समय रहते हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पन बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का ऊर्जा की खपत में प्राथमिकता देने की सोच ली तो एक बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण की समाप्त हो सकती है और हम हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़कर इसका लाभ लिया जा सकता है।

श्रोताओं, बरसात के समय में इन्फ्लुएंजा H1N1 स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ जाते हैं। जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है। इससे निपटने के लिए प्रखंड और जिला स्तर पर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने राज्य के सभी सिविल सर्जन और जिला सर्विलांस पदाधिकारी को एक पत्र जारी किया है। समय रहते निगरानी और बचाव के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के 11 जिलों में से 8 में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। श्रोताओं, अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, अत्यधिक थकान, शरीर और सिर में लगातार दर्द, नाक बहना या बंद होना या पाचन संबंधी समस्या हो तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। और यहाँ डॉक्टरों का कहना है कि इसे बचने के लिए छोटे छोटे उपाय हैं। हाथों को बार बार धोएं, चेहरे को छूने से बचें, खांसते या छींकते समय मुंह को ढके मास्क के उपयोग की सलाह भी दी गई है। राज्य में भी स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। कई जिलों में अलग से बेड और आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। जांच की सुविधा, संक्रमितों की स्क्रीनिंग, संसाधनों की उपलब्धता, ट्रांजिट प्वाइंट पर निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। सभी अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयां, पीपीई किट की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। हजारीबाग में भी हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है। यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। वहीं कोडरमा में सदर अस्पताल में अलग से 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया जा रहा है।

श्रोताओं, आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। कार्यक्रम हेलो हजारीबाग का समय अब समाप्त होने वाला है। आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त सुनील को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। सलमा की ओर से नमस्कार। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो के ना याद हो। रंग तरंग कार्यक्रम का आगाज बेगम अख्तर की आवाज में सुनकर यह गजल, कलाम है मशहूर शायर मोमिन खान मोमिन का।
1: रंग

तुम्हें याद हो कि ना याद हो कि कार्यक्रम है रंग तरंग। लीजिए सुनिए एक एल्बम सॉन्ग अलीशा चुनोई की आवाज में, म्यूजिक है बिद्दू का।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अगला गैर फिल्मी गीत है लक्की अली की आवाज में। गीत को लिखा है असलम ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए फाल्गुनी पाठक की आवाज में गैर फिल्मी गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने। एल्बम का नाम है याद पिया की आने लगी।

जहर माई जैक्सन अदनान समी की आवाजें हैं अगले गीत में. इस गीत को लिखा है इरफान सिद्दीकी ने, संगीत है अदनान समी का, एल्बम का नाम है एक लड़की दीवानी सी.

साथियों, रंग तरंग कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग है शान की शानदार आवाज में। गीत है विशाल ददलानी का, म्यूजिक कंपोज किया है विशाल शेखर ने। एल्बम का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

आइए सुने अगला गैर फिल्मी गीत शोभा मुद्गल की आवाज में। रचना है अनिल पांडे की, संगीत रचना संदेश शांडिल्य की, एल्बम का नाम है प्यार के गीत।

0: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी गीत है गायक और संगीतकार भूपेंद्र हजारिका की आवाज में। गीतकार है गुलजार, एल्बम का नाम है मैं और मेरा साया।
1: आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर,
2: आमी एक जाजाबर।
1: पृथ्वी आमा
2: बहुत मशहूर नगमा है भूपेंद्र का।
1: भूले छी निजेर घर, आमी एक
2: जाजाबर का सही तर्जुमा मुसाफिर भी नहीं, बंजारा भी नहीं, आवारा भी नहीं, लेकिन सबसे करीब आवारा है। बिना मंजिल के घूमते रहना, चलते रहना, बहते रहना, इस जमीन पर, इस पूरी जमीन पर जिसे वो अपना घर समझता है या मंजिल समझता है, और घर जो कहीं नहीं है इसे क्या कहेंगे, आवारा कहीं का या आवारा कहीं का नहीं।

0: श्रोताओं, आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। राष्ट्रीय सेवा विवेक भारती इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी समाचार बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में 0.5% की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहली दौर में

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ यादगार सदाबहार गीतों की माला से। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं जी एल रावल, संगीतकार हैं सोनिक ओमी। फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है आरजू।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल में सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजा और रंक।

इंदिवर का लिखा गीत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है पारस।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली टहनियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम था जिगरी दोस्त। आइए सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आप आए आए दिन बहार के।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है शर्मीली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

फिर आपको याद दिलाते चलें कि आज की इबारत क्या है। मोहब्बत कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास, प्यार यहाँ जो ना करे वो खाक जिए खाक मरे, मर के भी जो ना मिटे ये वो दीवानगी। दूर रहे पास रहे दिल में तेरी प्यास रहे, प्यार के बिना ये भी कोई जिंदगी है। इसलिए उस बेखबर को कोई ये खबर दे कि ये प्यार हमको पागल ना कर दे, क्योंकि आशिकी इम्तिहान लेती है। फिर भी पागल प्रेमी कहता है कि मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। तेरी गोरी रंगत का तो बड़ा चर्चा है, जब तू कमरे में चांदनी बनकर आई तो बिजली का क्या काम है। इसलिए झूठा है यह गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, और सच्चे प्यार को तड़पाना अच्छा नहीं। तो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। ये शोखियां ये बागपन, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये रुत प्यार की जुदाई में गुजर जाएगी, मेरी याद तेरा दिल तड़पाएगी। तौबा तौबा फिर क्या होगा।

शमा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को, कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को, कि एक से भले दो, दो से भले तीन। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ मैं दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की आवाज हूँ। अनहोनी पग में काटे लाग बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, फिर दिलवाले क्यों घबराए।

सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर हम और आप मिलकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश।

ये वो इबादत है जो फासलों को मिटाकर धड़कनों को एक कर देती है। कोई जाकर मेरे उस बेपरवाह सनम को बता दे कि उसकी सादगी ने हमें दीवाना बना दिया है। अगला मैसेज था ये कि सच्ची मोहब्बत कोई समझौता नहीं, वो खुद का विसर्जन है। मोहब्बत में मैं मिटता है और सिर्फ तू ही बचता है। इसके बाद अगला मैसेज इन्होंने लिखा है कि प्यार एक साधारण इंसान को भी शायर और पूरी दुनिया को एक खूबसूरत ख्वाब बना देता है, और एक पागल आशिक के लिए उसका महबूब ही उसकी बंदगी बन जाता है। तुम्हारी आँखों के आईने में मैं अपनी पूरी हयात देखूं, अगर मिले जो तुम्हारा साया तो धूप में भी बारात देखूं। अच्छा, अगला ये मैसेज हमें मिला है कि दो दिलों की मोहब्बत भरी दीवानगी दास्तां बयां करती है। दमदार इबारत है, कायनात की इस कुदरती करिश्माई तोहफा मोहब्बत की तड़प तन्हाई का खूबसूरत चित्रण प्रेमी युगल के बेसब्री बेकरारी को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। और प्रेमपूर्ण संगीत सफर के इस कार्यक्रम में हम श्रोतागण डुबकी लगाकर तर जाने को बेकरार रहेंगे। तो साथियों, शुरुआत में तो हमने आपको कुछ संदेशे पढ़कर सुना दिए। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ में, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर, पद्मिनी और सुषमा श्रेष्ठ की। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात, और बचपन में बिछड़े तीन भाई उनके माता पिता की हत्या का बदला लेने और बिछड़ कर फिर से मिलने की एक क्लासिक कहानी थी यादों की बारात। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस गीत में जो सबसे छोटा बच्चा था वो आज का बड़ा सुपरस्टार है, कौन है वो? और इस फिल्म में खलनायक अजीत का नाम क्या था, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे उनका नाम भी हमें बताएं। तो ये तीनों बातें आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। तब तक सुनते हैं ये खास गीत। इस खास गीत के जरिए बिछड़े भाई कई सालों बाद आपस में मिलते हैं।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। एमएमडीआर बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने अवैध माइनिंग को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा झारखंड की कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा असर। गोड्डा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 63 बीएचएमएस सीटों पर जारी रहेगी पढ़ाई। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने बीएचएमएस सीटों को दी मंजूरी। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में वज्रपात और बारिश की जताई संभावना। जीएससीए की वार्षिक आम सभा में 400 सदस्यों ने लिया हिस्सा। जस्टिस वीरेंद्र सिंह लोकपाल के लिए नामित। और सिमडेगा में 21वीं मेजर ध्यानचंद हॉकी चैंपियनशिप के तीसरे दिन सीओई सिमडेगा की दोनों टीमों ने दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की किर्गिस्तान यात्रा पर बिश्केक पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर किर्गिस्तान के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष आदिलबेक कासिमलियेव ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और कल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खान एवं खनिज विधेयक को लेकर राज्य सरकार पर लोगों में भ्रम फैलाने और अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
1: इनलीगल माइनिंग को ये सरकार प्रश्रय दे रही है और तभी तो एमएमडीआर बिल का विरोध कर रही है। लोकसभा से राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हुआ, देश में कानून बना और यह सरकार नहीं चाहती कि यहाँ लीगल माइनिंग हो।
0: वहीं कांग्रेस विधायक और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार से यह साबित करने को कहा कि विधेयक से अवैध खनन पर रोक लगेगी।
2: तो या तो डिबेट में बैठा दीजिए बाबूलाल मरांडी जी के साथ और वो बता दे बाबूलाल मरांडी जी कि अवैध खनन कैसे रुकेगा एमएमडीआर बिल के संशोधन से, और हम उनको कैसे साबित कर देंगे कि 22,000 करोड़ रुपया का नुकसान है इस राज्य के लोगों को और उससे जन कल्याणकारी योजनाओं में भी बाधा पड़ेगा।
0: पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग की। सोरेन ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षित सीटों में कमी का दावा करते हुए कांग्रेस पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। गोड्डा राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 63 सीटों पर बीएचएमएस पाठ्यक्रम जारी रहेगा। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने इसकी मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि कॉलेज में शिक्षण स्टाफ की कमी दूर करने के लिए 53 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रही है। आद्रा मंडल में आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया गया है। इसके कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। टाटानगर आसनसोल मेमू 4 और 6 सितंबर को केवल आद्रा तक चलेगी। आसनसोल टाटानगर आसनसोल मेमू आज तथा 3 और 5 सितंबर को आद्रा तक सीमित रहेगी। खड़गपुर हटी एक्सप्रेस 2, 5 और 6 सितंबर को आद्रा से ही समाप्त और शुरू होगी। चक्रधरपुर गोमो मेमू का परिचालन 1, 4 और 6 सितंबर को महुदा तक चलेगा। कई मेमू ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। झारखंड के करीब 25,000 पीडीएस डीलर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के अनुसार डीलरों का एनएफएसए कमीशन करीब 1 वर्ष और ग्रीन कार्ड का कमीशन लगभग 2 वर्षों से लंबित है। संगठन ने कमीशन के नियमित भुगतान, पेपरलेस व्यवस्था लागू करने और ई पॉश मशीन में सर्वर की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में

0: जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के झुंड ने करीब आधा दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और कई एकड़ में लगी धान, गन्ने और मकई की फसल को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के गांव में घुसने से ग्रामीणों में दहशत है और लोग रात भर जागकर सुरक्षा करने को मजबूर हैं। बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने प्रशासन से हाथियों को गांव से दूर भगाने और प्रभावित लोगों का मुआवजा देने की मांग की है।
1: क्षति जो हुआ है उसका क्षतिपूर्ति करने के लिए मैंने आग्रह किया है कि इसका जांच पड़ताल हो और जांच पड़ताल करके जिन किसानों को अधिक क्षति हुआ है उसको मुआवजा की राशि दी जाए ताकि हाथियों से गरीबों को हाथियों के आतंक से बचाया जा सके।
0: रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में देर रात फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कमड़े रातू निवासी टोनी लोहरा के पेट में गोली लगी है, उसे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार मंडा बगीचा में युवकों के जुटने के दौरान विवाद के बाद फायरिंग हुई। पुलिस घटना की जांच कर रही है और आरोपी की पहचान के प्रयास जारी हैं। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में आधा प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर, जबकि सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर काम कर रहा था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,44,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
2: बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब अच्छी तरह चिन्हित निम्न दबाव में बदल गया है, जिसके असर से झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ हिस्सों में अगले 1 से 3 घंटे में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही किसानों को मौसम सामान्य होने तक खेतों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इधर पूर्वी सिंहभूम में लगातार हो रही बारिश और ओडिशा से डैमों का पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन और राहत बचाव दल को अलर्ट मोड में रखा गया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के घाघरा गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण राम मुंडा का मिट्टी का घर धंस गया। घर गिरने से राम मुंडा अपने वृद्ध माँ और 2 बच्चों के साथ बेघर हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की उम्मीद जताई है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा की बैठक रांची स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने की। करीब 400 सदस्यों ने पिछले वर्ष के कामकाज और वित्तीय मामलों पर चर्चा की। बैठक में एसबी सिंह की सदस्यता समाप्त करने के फैसले की पुष्टि की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऑडिटेड लेख को भी मंजूरी दी गई। वहीं हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकपाल के लिए नामित किया गया। सिमडेगा में 21वें मेजर ध्यानचंद सीनियर जिला महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के तीसरे दिन महिला वर्ग के 2 मुकाबले खेले गए। सीईओ सिमडेगा ए ने एसटीएस सिमडेगा को 3-0 से हराया, जबकि सीओई सिमडेगा बी ने एसटीसी लचड़ागढ़ को 1-0 से पराजित किया। दोनों विजेता टीमों ने 3-3 अंक हासिल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एमएमडीआर बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने अवैध माइनिंग को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा झारखंड की कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा असर। गोड्डा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 63 बीएचएमएस सीटों पर जारी रहेगी पढ़ाई। राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग ने बीएचएमएस सीटों को दी मंजूरी। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में वज्रपात और बारिश की जताई संभावना। जेएससीए की वार्षिक आम सभा में 400 सदस्यों ने लिया हिस्सा। जस्टिस वीरेंद्र सिंह लोकपाल के लिए नामित। और सिमडेगा में 21वें मेजर ध्यानचंद हॉकी चैंपियनशिप के तीसरे दिन सीओई सिमडेगा की दोनों टीमों ने दर्ज की जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

केंद्र पर गए हैं आप? कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है धर्मवीर। तो धर्मवीर फिल्म में दोनों बिछड़े भाइयों के रोल में कौन से अभिनेता थे, उनके नाम बताएं। वैसे इस फिल्म में एक हीरो का तो नाम छुपा है, और साथ ही अपने विचार भेज दीजिए हमें।

हमारे दोस्तों ने हमें जवाब भेज दिए हैं कि धर्मवीर में दो जुड़वा भाइयों के रोल में नजर आए थे धर्मेंद्र और जितेंद्र, और उनके साथ में जीनत अमान और नीतू सिंह थी। एक दोस्त ने लिखा है कि सच्चे दोस्त समय आने पर काम आते हैं। ये कमेंट मिला है कि 4 साल पहले हमारा पालतू जानवर घर से गायब हो गया था। बहुत खोजा गया, खोया पाया, केंद्र में भी गए और कुछ भी पता नहीं चला। बहुत दिनों तक घर के सभी लोग उसे ढूंढते रहे, उदास रहे, याद तो आज भी आती है। राहों में चाहे कितने ही कांटे हो, वक्त चाहे कितनी ही दूरियां क्यों ना ले आए, सच्चा प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। क्योंकि मोहब्बत फूल की तरह नाजुक जरूर होती है, मगर उसकी खुशबू उम्र भर साथ रहती है। मैं और तुम से हम हो जाना ही मोहब्बत है। प्यार का एहसास अपने आप किसी से रूह से निकलने वाली आवाज से होता है। वो किससे होगा या नहीं होगा या कहाँ होगा, ये कोई नहीं कह सकता। बस सब आत्मा और समय का खेल है। सुरीला सफर कार्यक्रम में अपने विचार, अपनी बातें, अपने संवाद, अपने पैगाम, अपने संदेश, अपने मैसेज, अपने कमेंट्स आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं। तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। इस दार्शनिक गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है धर्म करम, जिसकी कहानी नाटकीय और भावुक थी। तो इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था और खलनायक की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, लिख दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो लगातार भेजते रहिए अपने कमेंट्स।

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि रणधीर कपूर और राज कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और मुख्य विलन थे प्रेम नाथ। ये कुछ कमेंट्स मिले हैं कि 4 दिन की जिंदगी में किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं। त्रिमूर्ति, वक्त और संबंध इन फिल्मों में एक बार बिछड़ जाते हैं और फिर सभी लोग दोबारा मिल जाते हैं। पहले फिल्मों की कहानी में ऐसा बहुत दिखाते थे कि एक भाई कुंभ के मेले में खो गया और फिर फिल्म के एंड में मिल जाते हैं। हमें लगता था कि ये जल्दी से मिल जाएंगे। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि इश्क, प्यार, मोहब्बत, प्रेम में तो अक्षर भी अधूरे हैं, तो मोहब्बत क्या पूरी होगी। मोहब्बत जिसकी हमेशा से दुखदाई उसका अंजाम होता आया है, लैला मजनू, सोहनी महवाल, हीर रांझा हो या सास समंदर पार वाले रोमियो जूलियट, सभी के प्रेम का अंत समाज के हाथों से हुआ है। यही वजह है कि शायरों ने भी मोहब्बत की खूबसूरती से ज्यादा उसके अंजाम के बारे में लिखा है। ऐ मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया और मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई। साथियों, अब बात करते हैं समय और भाग्य के फेर में बिछड़ जाने वाले परिवार की कहानी की, जहां वक्त सबका अलग अलग इम्तिहान लेता है और आखिर में ऐसे हालात बनते हैं कि सब आमने सामने आ जाते हैं। निर्माता बीआर चोपड़ा की ये फिल्म हमें क्या सीख देती है वो बताएं, और लाला केदारनाथ की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता का नाम भी बता दें। और हाँ, इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, वो कैसे भूल सकते हैं, तो लिख दीजिए जल्दी से। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम आप बताएंगे हमें, और साथ में ये भी बताएंगे कि इस जोहरा जबी का नाम क्या है।

हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि मोहब्बत वो जुनून है जो मिटती नहीं फना होकर, ये रूह में बसती है सांसों की सदा होकर, चांदनी का क्या गिला जब हुस्न ही महताब बने, हर बात में शोखियां हैं हर अदा लाजवाब बने। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीत हैं आज इबारत में, और उन्होंने गीत के बोल लिखे हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, ऊपर से आप लोग भी इम्तिहान लेने लगे हैं तो हमें तो चक्कर आ रहे हैं, तो ये तो नहीं बताए कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। कमेंट्स में जो जवाब मिले हैं उसमें लिखा है कि ये मशहूर डायलॉग बोला था राजा यानी कि राजकुमार ने, चिनोई सीट जिसके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और लाला केदारनाथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता थे बलराज सहानी, और हिंदी फिल्मों की पहली जोहरा जबी का नाम है अचला सचदेव, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म में वरिष्ठ अभिनेत्री ने काजोल की दादी का किरदार भी अदा किया था। तो साथियों अब बात करते हैं एक्शन और थ्रिलर फिल्म की। ये कहानी है बचपन में बिछड़े दो भाई मोहन और सोहन की। बड़ा भाई सीआईडी अधिकारी और छोटा भाई गैंगस्टर बन जाता है इस फिल्म में। तो इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम हमें बताएं, और ऐसे भी इसमें कलाकार थे जिन्होंने हमेशा पुलिस कमिश्नर की भूमिकाएं निभाई थी, तो उस अभिनेता का नाम भी लिख दें अपने संदेशों में। और अब फिल्म का नाम, गीतकार, संगीतकार आप बताएंगे क्योंकि आपको सब पता है। तो मोहन सोहन कौन थे, और इस ये भी बताएं कि इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से किस जगह पर हुई थी, हमें ये भी बताएं।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म की शूटिंग बिहार के नालंदा, खंडर और राजगीर के जंगलों में हुई थी। देव आनंद, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ, इफ्तखार, जगदीश राज, एक साथ सारे नाम लिख दिए आपने। इस गीत में आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे इंदीवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि जब मैं लगभग 2 साल का था तब मेरी बड़ी दीदी मुझे शहर में सब्जी मंडी लेकर गई थी। जब घर लौटी तो केवल सब्जियां ही थी घर पर। माताजी ने पूछा कि भैया कहाँ है, तब दीदी को समझ आया कि मैं वहीं छूट गया। तब वे दौड़कर आई और वहां आकर देखा तो मैं वहीं खड़ा रो रहा था। बस इतना ही किस्सा है बिछड़ने और मिलने का। तो हम भी आपसे पूछ लें कि आप मिले कि नहीं। एक साथी ने लिखा है कि वक्त फिल्म, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें वक्त की कदर करना चाहिए। साथियों, बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ जाने वाले उस बच्चे की कहानी जो समाज में खुद को लावारिस पाता है, उसे समाज में अपनी असली पहचान और अपने पिता को ढूंढने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं उसे फिल्म का गीत। तो बताइए उस गीत के बोल क्या है, गीतकार का नाम क्या है, फिल्म का नाम भी बता दीजिए, संगीतकार भी बता दीजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि इस मूवी में गंगू गणपत किरदार को किस दिग्गज महान अभिनेता ने निभाया था।

jusqu'ici.

साथियों हमें जवाब मिले हैं कि फिल्म का नाम था लावारिस। अलका याग्निक की आवाज थी, गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। और गंगू गणपत की जो जो किरदार जिस अभिनेता ने निभाया था उनका नाम था डॉक्टर श्री राम लागू। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि वक्त फिल्म की एक सीख होने और अच्छी लगती है कि कितने ऊंचे हो जाएं पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत बलवान होता है, एक झटके में अर्श से फर्श पर ला देने के का सामर्थ्य रखता है। फिल्मों में खोए हुए भाई बहन पिता पुत्र तो मिल जाते हैं किंतु हमारे

कमेंट्स गायब ऐसे होते हैं कि मिलना मुमकिन नहीं लगता। वक्त फिल्म का दूसरा मशहूर डायलॉग है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाएगा तो खून निकल आता है। और ये एक मैसेज मिला है कि वक्त में अचला सचदेव ने जोहरा जबी का किरदार निभाया था, और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, और मेरी लिस्ट का पांचवा गाना भी शामिल हो गया है।

दोस्तों कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है, समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। आवाजें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर साथियों की। इस गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस फिल्म में अभिनेता का नाम लोगों ने लिख दिया है अमिताभ बच्चन।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, अपनी बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए। आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे सुंदर संदेश चरैवेति चरैवेति अर्थात चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।

ये वेद वाक्य हमें सिखाता है, रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन गतिमान है, जैसे जल यदि स्थिर हो तो वो उपयोग के लायक नहीं होता और प्रवाहमान जल शुद्ध स्वच्छ उपयोग युक्त होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह हमें भी जीवन में कभी नहीं ठहरना है। यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ही नहीं कहते, यात्रा जीवन को समझने, नए नए अनुभव प्राप्त करने और निरंतर कर्म करते रहने, स्वयं को निखारने और सदैव गतिमान रहने, सीखने और प्रगति पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए चले चलते हैं जीवन की सुगम निर्गम धूप और छांव की इस यात्रा में।

भारत में तो यात्राओं और देशाटन की गौरवशाली परंपरा रही है। यात्राओं से हमें अलग अलग स्थानों को देखने, जानने, तरह तरह की लोक संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारा मन और जिज्ञासु होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आपसी सद्भाव और सहिष्णुता का भी विकास होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि दुर्गम मार्ग से यात्रा किया करते थे।

विदेशी यात्रियों का भी भारत में आना जाना था। यूनान से मेगास्थनीज, चीन से फाहियान और विनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत की संस्कृति को समझने आए, अनुभव, ज्ञान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए यात्रा जरूरी है।

हमारा तन और मन दोनों ही एक निरंतर यात्रा के पथिक हैं। ये यात्रा हमारे जन्म के साथ आरंभ होती है। हम पहली बार संसार को आश्चर्य और मासूमियत से देखते हैं, फिर युवा अवस्था की यात्रा में संवेदनाओं, सपनों और संभावनाओं का संसार हमारे सामने खुलता है। ये जीवन यात्रा का सबसे ऊर्जावान और कर्म प्रधान समय होता है। इसी समय के हमारे निर्णय, हमारा परिश्रम और हमारे कर्म ये तय करते हैं कि समाज हमें किस रूप में याद रखेगा। धीरे धीरे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं हम, और वृद्धावस्था की यात्रा, ये यात्रा पूरे जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब होता है, झलक होती है। अतः जीवन की इस यात्रा को, इस सफर को बड़ी खूबसूरती से सजाएं, सुमधुर और सुहाना बनाएं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज, मृतकों की

0: संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुकुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
5: स्पेस एंड टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना।

0: टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटांग में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में

0: इस बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371 7117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है आराधना।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए वो गीत जिसमें आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। और इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। तो कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अन्नदाता इस फिल्म से। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी और इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अनुरोध। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हैं। इससे पहले श्री मोदी ने आज वहां महात्मा गांधी के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचारों का हमारे मन पर हमेशा एक अद्वितीय प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में विभिन्न समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ऐसे लोगों के समूह से मुलाकात हुई जिनका भारत से गहरा जुड़ाव है। नेपाल में पिछले दिनों आए जल प्रलय की घटना के बाद से अब भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। रांची के रामप्रसाद घोष भी लापता हैं, जो नेपाल में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी में कार्यरत थे। परिजनों से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात कर उन्हें खोज निकालने में मदद की गुहार लगाई है। श्री सेठ ने इस दिशा में पहल का भरोसा दिया है और कहा कि इस विपदा की घड़ी में वे मजबूती के साथ प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं।
1: ग्लोबल वार्मिंग के बाद जो ग्लेशियर पिघला और जो सैकड़ों लोग हताहत हुए, बहुत दुखदायी है और रांची

0: ये व्यक्ति हैं वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के प्रोजेक्ट में थे और लगातार हम सब संपर्क में हैं, अभी भी संपर्क में हैं, वहां एम्बेसी से बात कर रहे हैं कि वस्तु स्थिति क्या है।
1: रांची के ओरमांझे स्थित पैतृक आवास पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आज आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने वालों में जगनलाल पहान और अन्य शामिल रहे। इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा और सकारात्मक संवाद हुआ। इस मौके पर समाज के नवनिर्माण तथा समस्याओं के समाधान और विकास से जुड़े मुद्दों पर मिलकर आगे बढ़ने पर जोर दिया गया। संथाल परगना के जिलों में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा लगातार जारी है। वीरों की भूमि साहिबगंज में उन्होंने भोगनाडीह में छात्र हित में आंदोलन को और धारदार बनाने का बिगुल फूंका है। आज यह यात्रा देवघर पहुंच गई है। यहां से धनबाद और बोकारो की ओर यात्रा प्रस्थान करेगी। श्री महतो ने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज जिले में पीएम पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय स्टेयरिंग सह मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। इस दौरान योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रांची के डोरंडा में रिसालदार बाबा के 219वें उर्स मुबारक का आज आखिरी दिन है। इसमें खास और आम सभी पहुंच रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने कल दरगाह में चादर पोशी कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्री अंसारी ने डोरंडा के इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही दरगाह परिसर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर बल दिया।
2: 15 दिनों के अंदर आपका जो हॉस्पिटल है उसको मैं डेथ केयर हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ। 15 करोड़ रुपया मैं सेंक्शन कर दिया हूँ। 15 दिनों के अंदर मैं शिलान्यास करूंगा। यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेंगे और हमारे बाल बच्चों का इलाज यही पे होगा। ना आपको सदर जाना पड़ेगा, ना आपको रिम्स जाना पड़ेगा।
1: गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के झुंड ने करीब आधा दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के गांवों में घुसने से ग्रामीणों में दहशत है और लोग रात भर जागकर सुरक्षा करने को मजबूर हैं। बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने प्रशासन से हाथियों को गांव से दूर भगाने और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान देवघर, धनबाद और जामताड़ा जिले में गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने के भी आसार हैं, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ही सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ यहाँ।
1: बिल्कुल, और मुलाकात तो होती ही रहती है ना, अब सखी सहेली के साथ माइक के साथ मुलाकातें बारी बारी से होती रहती है सखियों से। और एक मिलना होता है, मन का मिलना, वो बहुत जरूरी है। बस वो मुलाकात होती रहे ये काफी होता है। और जब मन मिलता है तो मुझे लगता है कि दो लोगों का मन मिलता है तो दोस्ती बहुत लंबे समय तक कायम रहती है।
2: बिल्कुल सही।
1: दो लोगों का जब मन या दिल मिलता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और जब दो दिल मिलते हैं तभी तो दाम्पत्य के सूत्र में बनते हैं ना।
2: और मिल तो जाते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बन जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं बहुत लंबी पारी तक उन्हें साथ जाना होता है। इस लंबी पारी तक साथ चलने के लिए बहुत सारे सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं, कई बार एक बहुत सारी बातों को कहते हैं कि समझ के लेना वाली बात जो होती है कि हमेशा होड़ नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, तू तू मैं नहीं करनी है। सिर्फ उन बातों को तालमेल कैसे बिठाए ताकि घर में एक सुख शांति का वातावरण बना रहे, सबके बीच में प्रेम बना रहे। तो सुखी दाम्पत्य जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे जो सुनने वाले लोग हैं अगर वो बहुत लंबी पारी तक आ चुके हैं, यानी कि आज उनके विवाह जो वैवाहिक जीवन है उसको 35 बरस 25 बरस हो चुके हैं या 15 बरस हो चुके हैं, तो अब तक जीवन कैसे रहा और कैसे तालमेल बिठाया उन्होंने अपने साथी के साथ में।
1: और जब दोनों में से कोई एक नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, तकरार होती है, तो मेल कैसे होता, अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और ये तो आज हम ये बातें इसलिए शुरुआत में ही करें कि सुखी दाम्पत्य जीवन आज का एक मुद्दा है, विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोता भी इस चर्चा में शामिल हों।
2: और सोमवार के दिन हम जो प्रादेशिक व्यंजन है उनको लेते हैं, और अगस्त के पूरे महीने में हमने लिए हैं पश्चिम बंगाल के जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं ना, चाहे वो तीखे चटपटे हों या मिठास लिए हुए हों, ऐसे व्यंजन हमने बताए हैं। तो आज ये आखिरी सोमवार है अगस्त के महीने का, तो बहुत सारे जो व्यंजन हम जिन्हें शामिल नहीं कर पाए हैं उनको आप जरूर बताइए उनके बारे में। और कुछ नाम हमने दिए हैं हमारे श्रोताओं को, उनके बारे में वो बताएं और उनकी रेसिपीज लिखकर साझा करें।
1: और कथा सुधा की बात भी करेंगे, कथा सुधा सुनवाएंगे। और आज एक खास दिन और है, एक ऐसी कवित्री लेखिका का जन्मदिन है जिन्हें जब हम याद करते हैं तो बस प्रेम का भाव, प्रतिरोध का भाव मन में पैदा होता है कि उनकी लेखनी में प्रेम भी था, प्रतिरोध भी था। और बड़ी बेबाक लेखिका मानी जाती है। रसीदी टिकट आप सबने पढ़ी होगी, और भी उनकी कृतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा उनका लिखा ये गीत सुन लेते हैं।

0: कादम्बरी फिल्म का ये गाना था और ये इसलिए गाना खास तौर से सुनाया गया, अमृता प्रीतम की याद को ये गाना समर्पित था। और अमृता जी की के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम श्रोताओं को दे दें कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत के जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आखा वारिस शाहनू के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का बहुत ही दुखद वर्णन है। और इसके अलावा इनके उपन्यास है 5 बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां और इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने रसीदी टिकट तो जरूर पढ़ी होगी। कहानी संग्रह कहानियां जो कहानियां नहीं है कहानियों के आंगन में और संस्मरण कच्चा आंगन, एक थिसारा और बहुत सारी अन्य कृतियां भी हैं इनकी। और जब भी हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो खास तौर से महिलाएं उन्हें उनसे प्रेरणा भी पाती हैं क्योंकि उनकी उनकी जो लेखनी थी उसमें पंजाब की मिट्टी की सौंधी गंध थी, उसमें प्रेम की आवाज थी, विरह भी था, विद्रोह भी था, तो ये सब कुछ एक महिला को परिपक्व और परिपूर्ण बनाता है। तो अमृता जी की याद को आज नमन कर रहे हैं
1: और अब सुनते हैं कथा सुधा।

0: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: छह आने का टिकट, इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना।
2: आप ही किशोर जी हैं
3: जी।
2: आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
3: अच्छा।
2: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
3: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ हाँ हाँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया।
2: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना।

0: उचित होगा।
1: जी
0: जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
1: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं। लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
0: किशोर जी,
1: जी
0: आज तो आपकी छुट्टी है,
1: हाँ
0: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
1: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भीखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2 6 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
0: नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
1: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
0: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
1: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

0: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है और श्री राम खेलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझमें इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो,
2: भवानीपुर थाने से बोल रहा हूं। आपके यहां कोई राम खेलावन शरण प्रसाद तो नहीं ठहरे?
1: जी, खैरियत तो है, जिंदा है ना?
2: जी हाँ, है तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं, आध घंटा हुआ लाए गए हैं, आप उन्हें ले जाइए।
1: जी। रिसीवर मैंने रख दिया। अच्छा, तो हमारे श्री राम खेलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी है, भाई मान गए। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होते हैं। ऐसा लग रहा है

0: करे जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। अब ये राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह जैसे आदमी इतना पी सकते हैं कि थाने में बांध दिए जाए, तो हम जैसे न पीने वालों के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बहरहाल अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था और मैं हवालात पहुंचा। पूरे 5 रुपए देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर ले आया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींच कर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। आखिर मुझे ही पूछना पड़ा, राम खिलावन शरण जी, भला आपको ये क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकले?
1: मैं शपथ से कहता हूं कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है।
0: क्या?
1: बदमाश पुलिस वाले ने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया।
0: अच्छा, वो क्यों भला?
1: अरे ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूं, आज 6 आने की टिकट ने मुझे मार डाला।
0: ये कैसे भला?
1: देखिए किशोर जी, आपने मुझे 6 आने का टिकट दे ही दिया था।
0: हाँ?
1: जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने 2 आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ, ट्राम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था और उसी ट्राम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टालीगंज गया, बालीगंज गया, बहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदा, राजा बाजार, श्याम बाजार, बाग बाजार, डलहौजी, हाई कोर्ट गया, बहु बाजार गया, हैरिसन रोड गया, नीमतल्ला भी मैं घूम आया। तो शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी तो पास में 2 आने पैसे थे तो नाश्ता डट कर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर पहुंचा, वहां उतरा मैं। मैंने हिसाब लगाया, 6 आने के टिकट में मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था और अब घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुकता और 6 आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया घूमना चाहिए था और इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था, लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था क्योंकि एक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। इधर ये ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी। जिस पर बेलगछिया लिखा था, मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया। मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम में बैठा रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा,
2: अब आप जाइए।
1: मैंने कहा मैं धर्मतल्ला जाऊंगा।
2: 11 बज गए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप, अब यहां से कोई ट्राम नहीं जाएगी।
1: किशोर जी मैं चौंक उठा। मैंने कहा कि क्या क्या क्या आप कोई ट्राम नहीं जाएगी है? नहीं जाएगी यहाँ से।
2: कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ।
1: मैं उठा वहां से, लेकिन मेरी जेब में 1 पैसा नहीं, मतलब बस पर कैसे आता। मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतल्ला यहाँ से कितनी दूर है?
2: होगा कोई 5 मील।
0: तो फिर आपने क्या किया?
1: किशोर जी मैं पैदल धर्मतल्ले की तरफ रवाना हुआ। करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुंचा। पूरी तरह थका हुआ था। धर्मतल्ला में

0: उठे बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया। उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया कि मालूम होता है सर, दारू पिए हैं, पैर सीधा नहीं पड़ते, जबान नहीं खुलते, नशा में बेहोश है। तो दूसरे ने कहा कि तो फिर थाने ले ही चलो, कल सुबह होश आई जाए। उस समय मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका या फिर वो मुझे नहीं समझ सके।
1: ओहो, ये बात है भीखू। अरे खाना ले आओ थाली में। भाई राम खिलावन जी, आपका अनुभव तो बहुत बुरा हुआ है। अब मेरी सलाह ये है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइत पर घर से नहीं चले थे।
0: जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे, कह
1: अच्छा
0: गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन तो हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, तब चला जाऊंगा।
1: लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
2: छे आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, पुलिस कर्मी यूनुस खान, ट्राम का कर्मचारी दीपक केसावलेकर, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: विविध भारती से। अरे हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं
1: जी।
0: तो बस यही बताना है कि ये कार्यक्रम है सखी सहेली, जो आज पहली बार जिन्होंने ट्यून किया होगा उनके लिए जरूरी है बताना कि सखी सहेली कार्यक्रम। और अब हम अपने एक मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो है शादी, दाम्पत्य। शादी दरअसल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती हैं। जीवन में यदि खुशियां हैं तो गम भी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे में जरूरी है कि हम इनमें संतुलन बनाकर चलें। लेकिन संतुलन बनाए कैसे? पति और पत्नी दरअसल होते एक सिक्के के दो पहलू हैं।
1: जी ममता जी।
0: दोनों में से किसी एक को कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी परेशानी नहीं समझे, बल्कि अपना कर्तव्य समझे और एक दूसरे के मन को समझे।
1: बिल्कुल। और ये जो रिश्ता है बहुत समझदारी से काम लेने का होता है, प्यार और विश्वास पर टिका होता है जो रिश्ता है पति पत्नी का। कभी भी इस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो जो इमारत है उसका

0: गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब पति पत्नी के रिश्ते की इमारत है, इसके दो आधार स्तंभ होते हैं, प्यार और विश्वास। ये स्तंभ अगर कमजोर हो जाएंगे तो रिश्ता ज्यादा समय टिक ही नहीं पाएगा। और जो भी पति पत्नी है जिनके बीच ये दो बातें बहुत मजबूत हैं, इनकी प्यार भी है और विश्वास भी है, उनका दाम्पत्य जीवन मान के चलिए कि हमेशा सुखमय रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो खट्टी मीठी बातें हैं वो तो जीवन का हिस्सा है, चलनी भी चाहिए।
1: बिल्कुल, देखिए ना इसी तरह की कुछ बात हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखी है। लिखा इन्होंने कि कहते हैं कि जो धनुष बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं वो चटक कर टूट जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू होती है। दाम्पत्य जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर एक दूसरे की खूबी को आप सराहते हैं तो कमियों को भी नजरअंदाज करना सीखिए। एक दूसरे की असहमति को समझे और ध्यान दें कि कहीं आप कंट्रोल फ्रीक तो नहीं होते जा रहे। एक दूसरे की कमियों और खूबियों को ही उसकी विशेषता समझें और हर कदम पर अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश हरगिज न करें, वरना जीवन में सिवाय कलह के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तुम समझो कुछ हम समझे, ये वाला सूत्र अपनाएं और दाम्पत्य की गाड़ी को दोनों पहियों पर चलने दें।
0: और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बदलने की कोशिश ना करें, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो आप उसको उसकी हर अच्छाई बुराई, उसकी कमियां खूबियों सबके साथ उसे अपनाते हैं और ये बहुत जरूरी है। कहीं आपको सिर्फ खूबियां देखकर किसी से प्रेम हुआ और बाद में कमियों के देखते अगर झगड़े में चीजें बदल जाती हैं तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन की निशानी रही है, क्योंकि जहां खूबियां होती हैं वहीं कमियां सब में होती हैं। और एक चीज और है ममता जी, कि जो चीज आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है। ये सबका देखने का समझने का अपना नजरिया होता है।
1: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी दाम्पत्य जीवन को कमजोर बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो दोनों की जहां समझदारी होती है वहां लंबे समय तक दाम्पत्य टिकता है, जबकि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, बड़ी घटना ना हो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि छह आने का टिकट भाग दो का इंतजार है, देख इन्होंने सुन लिया। और ये जो विषय है सुखी दाम्पत्य जीवन, मेरे कोमल दिल पर मरहम है और प्रहार भी। बहुत ही नाजुक विषय है, चर्चा का इंतजार है, सहन शक्ति की परीक्षा है। जब विवाहित जीवन 30 साल पूरा होता है तो साथ रहना भी है, एक दूसरे का के साथ दुश्मनी भी है, तो फिर भी कट ही जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। दरअसल इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, शायद हो सकता है कि छोटी सी दरार पड़ जाती है दाम्पत्य जीवन में तो लोग उसको बहुत बड़ा भी बना लेते हैं कई बार। हाँ। और कई बार उस दरार को पाटने की कोशिश नहीं करती है तो टूटने की नौबत आ जाती है, तो कोशिश हो कि वो दरार पाट लिया जाए।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा ना कि कई बार मुश्किल वक्त में साथ देना होता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का समय आता है जब पति पत्नी की भी एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। अभी मान लीजिए आपके जो पतिदेव हैं, यानी किसी स्त्री के पति हैं, उनकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और ये ऐसे समय में ना एक जीवन साथी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। हो सकता है कि अगर कोई महिला है वो कोई बिजनेस वुमेन है, यानी कि वो नौकरी करती हैं या कोई व्यापार करती हैं और उनके व्यापार में घाटा हो गया, तो चाहे वो पति है या पत्नी है, कामकाज जब मंदा होता है या छूट जाता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने लगती हैं। ऐसे में परिवार में लोगों का तनावग्रस्त होना जरूरी है, तो अगर आपके पति तनावग्रस्त हैं ऐसी चीजों को लेकर या पत्नी तनावग्रस्त हैं, तो दोनों एक दूसरे का साथ दें और प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। और ऐसे में यदि अगर ताने देंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ही ये नुकसान हुआ, तुमने ऐसे ठीक से नहीं किया, तो ये चीजें है ना घर में चीजों को और क्लेश बना देती हैं।
1: मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे की बात को समझें, और जहां कोई एक परेशान है तो साथी को चाहिए कि वो आपकी उस परेशानी को दूर तो नहीं कर सकता है कोई एकदम से, लेकिन उस परेशानी में ये जताना बहुत जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो ये नौबत जो आपने ऑफिस की बात कही, चाहे वो हो, चाहे एक दूसरे में से कोई जोड़ा बीमार पड़ जाता है तब की समस्या है, या फिर कई कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसका शिकार हो जाता है, तब तो निश्चित रूप से दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है। बात जरूरत की नहीं है, जरूरत तो आप और भी तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यहाँ पर बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की नींव होती है, मतलब प्रेम की बुनियाद पर ही टिका होता है, उस प्रेम को टूटने से कैसे बचाएं।
0: और जैसे आपने कहा ना कि चिंता ना करते हुए अगर कोई भी एक शख्स ये कह देता है कि आप चिंता मत करो मैं हूं ना आपके साथ,
1: बिल्कुल,
0: तो ये जो शब्द हैं बहुत कहते हैं कि मजबूत बना देते हैं।
1: अब एक गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, और हमारी बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और साथ से दाम्पत्य जीवन भी सुखी और बच्चे भी सुखी होते हैं। बात यहाँ बच्चे की है, तो ये बात बताना बहुत जरूरी है। कई बार दाम्पत्य जीवन को स्थायी रखने के लिए, टिकाऊ रखने के
1: हाँ
0: लिए
1: हाँ
0: बच्चे बच्चे की भूमिका बहुत अहम होती है।
1: हाँ
0: कई बार बच्चे पति पत्नी के झगड़ों में आकर अच्छी बड़ी भूमिका निभाते हैं और झगड़े को खत्म भी करवा देते हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: कई
1: कहा।
0: बार ये माता पिता भी बच्चे के लिए अपने झगड़े खत्म कर देते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। और कई बार ऐसा भी होता है ना, जब मुश्किल का समय आता है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, हमने एक सिर्फ कारोबार या नौकरी की बात की, ऐसे समय में पत्नियां एक तरीके से इस चीज को टूल की तरह इस्तेमाल करती है। भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी। यानी कि बात बात पर आपको अपने, चाहे वो कोई छोटी सी नोकझोंक वाली बात है या कोई बड़ी समस्या आपके साथ में हुई है दाम्पत्य
0: जल्दी
1: जीवन
0: यहाँ पर
1: में
0: अब उल्टा भी होने लगा है। हमने तो सुना है कि अब महिलाएं ये कहती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको घर से निकाल
1: अच्छा तो भाई
0: दूंगी।
1: दोनों ही परिस्थितियां

0: है वो ठीक नहीं है, ना तो पति को घर से बाहर निकालने वाली परिस्थिति ठीक है, ना ही मायके जाने वाली है। जो भी कोई समस्या आपके जीवन में आई है, जो दाम्पत्य जीवन के साथ में उलझनों को बढ़ा रही है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करना है और दोनों को मिलजुल कर ही करना है। अगर किसी तरह से हमें पता लगता है कि जीवन साथी के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या भी है, किसी रोग से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में भी धैर्य से काम लेना है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो पति हैं या पत्नी, तो उनका सहयोग अगर मिलेगा, आप ध्यान देंगे, तो वो जो भी आपका रोग है या आपकी समस्या है, उससे जल्दी स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर उबर कर बाहर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कुछ मिलती जुलती बातें हमारे श्रोताओं की ओर से भी आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी खुशी है, जो पारस्परिक सम्मान, अटूट विश्वास और खुले मन से संवाद रूपी की चेन में बंधी हुई है। अध्यात्म और ज्योतिष दृष्टि से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती को ध्यान में रखना चाहिए, और इस मतलब आध्यात्मिक की ओर ले जाने की बात इन्होंने कही है। दरअसल आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, ऐसे में आपको सबसे बड़ी कुंजी तो यही है कि आप एक दूसरे की बात को सुने और समझें, तो काफी कुछ मुश्किलें हल हो जाती हैं।
0: एक बड़ा छोटा सा बात छोटी सी कही है शोधा ने, लेकिन अहम बात है। उन्होंने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन कोई बना बनाया नियम नहीं, ये दोनों की भागीदारी की निरंतर प्रयासों और आपसी समझ के बिना किसी शर्त के बिना एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना से ही ये रिश्ता फलता और फूलता है।
1: चंचल जी, दरअसल ये बड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक डोर होती है दाम्पत्य की, और इस नाजुक डोर को टूटने से बचाना ही सही होता है। हालांकि अब दौर बदल चुका है, जब हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की जब बात आती है, तो यही होता है कि आपकी जब आपका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ को छोड़ दें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है छोड़ना भी। जोड़ना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही कठिन होता है। तो जब आप घर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज्यादा रोज रोज की मारपीट, लड़ाई झगड़े जब एकदम अति हो जाती है, तो निश्चित रूप से छोड़ना ही बेहतर होता है। लेकिन उसके लिए लड़कियों की बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जो परवरिश होती है, उनको शुरू से ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। अब पिछला समय जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही सम्मान देना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि घरों में लड़कियां कभी पिता के सहारे, कभी भाइयों के सहारे, फिर कभी दोस्तों मित्रों के सहारे ही अपना जीवन जीती हैं। तो जब पति पत्नी के बीच ऐसी नौबत आती है, तो वो औरत ये सोचती है कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। तो ये जो सहारे वाली बात मन में आती है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो दौर बदल चुका है।
0: और कई बार जब त्रिकोण वाली परिस्थिति आती है ना, अगर आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, पति की कोई अगर महिला मित्र है या पत्नी की कोई पुरुष मित्र है, तो उनको लेकर भी कई बार संदेह मन में इस तरह के आते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है। और कई बार आजकल मोबाइल जो चीज है, हम एक दूसरे की अंदर झांकने के लिए उस मोबाइल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर वहां कोई पासवर्ड है वो हमें ना मिले, तो शक कितना पक्का हो जाता है, गहरा हो जाता है कि भाई पासवर्ड क्यों लगाया है आपने अपने मोबाइल पर, ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते। तो ये चीजें भी कई बार परिस्थितियों को बहुत उलझा देती हैं, तो चीजों को समझ के लेने वाली बात है।
1: और पासवर्ड तो अमूमन महिलाओं को, मतलब महिलाओं का पासवर्ड पुरुष ही तय करते हैं, तो ये तो शायद भेद अब तक नहीं मिट पाया है। और ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो जिसे हम अनदेखा करके दाम्पत्य जीवन को संभाला जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक साथी की नाइट शिफ्ट होती है और दूसरा घर में है, मान लीजिए पति की नाइट शिफ्ट है और पत्नी घर में रहती है और घर की पूरी देखरेख कर रही है, उसके कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी है, तो यहाँ भी टसल होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसको नींद की जरूरत होती है पति को, और वो घर उतना मैनेज नहीं कर पाता है, तो भी मुश्किलें होती हैं। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण टकराव होते हैं।
0: कुल मिला के कहना यही है कि हर समय, चाहे वो कठिन समय है चाहे आपके प्यार के पल हैं, एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रहें और अपनी जिंदगी की मुश्किल भरे दौर में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। जब आप खुशी एक साथ साझा करते हैं तो दुख को भी एक साथ साझा करें।
1: साथ छोड़ने की जब बात आती है तो बहुत जरूरी है कि स्वावलंबी होना महिलाओं का। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं और

0: और उनकी भी आजीविका है साथ में, तो जब ऐसी नौबत आती है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ नहीं टूटता है।
1: जी
0: इसलिए बचपन से लड़की और लड़के को बराबर रखना चाहिए। और बात जब दाम्पत्य जीवन को संभालने की आती है तो यही हम सभी यही कहते हैं कि तोड़ने से बेहतर होता है जोड़ना।
1: जी
0: तो जितना हो सके जोड़िए एक दूसरे को।
1: अब
0: फिलहाल
1: सुनते
0: सुनिए
1: हैं
0: ये गाना।

0: देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना अभिमान फिल्म, ये भी तो दाम्पत्य जीवन पर ही आधारित
1: है। किस तरह से थोड़े से अहम को लेकर दाम्पत्य जीवन टूट जाता है,
0: तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन भई दाम्पत्य

0: दाम्पत्य जीवन सुखमय ही नहीं अपितु आनंद युक्त होना चाहिए, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लोगों के पास आनंद नहीं है। बहुतेरे अपने उस बेगाने प्यार की तलाश और मोबाइल में कर रहे हैं, तो क्या किया जाए?
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब कुछ खट्टे मीठे चटपटे जिस तरह के भी व्यंजन हैं इनकी बात हो जाए। और आज हम बात कर रहे हैं जिन व्यंजनों की, उसमें से एक है शुक्तो। ये एक पारंपरिक बंगाली मिश्रित सब्जी होती है जिसका स्वाद हल्का कड़वा और मलाईदार होता है। मुख्य सामग्री इसमें होती है करेला, कच्चा केला, बैंगन, सहजन की फलियां यानी कि ड्रमस्टिक्स और राधुनी मसाला और दूध। इसे बंगाली दोपहर के भोजन की शुरुआत के समय मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता है।
0: और एक व्यंजन इस तरह से बना है, सोनार मूंग दाल। ये भुनी हुई मूंग दाल से बनने वाला खास और शाही व्यंजन कहलाता है। इसमें दाल को पहले सूखा भून दिया जाता है जिससे इसमें एक बेहतरीन सोंधी खुशबू आती है। मुख्य सामग्री है सोना मूंग दाल, छोटे दाने वाली खास तरह की दाल, घी, काजू, किशमिश और हरी मिर्च। इसे बंगाली शादियों, त्योहारों और विशेष पूजा के अवसरों पर चावल के साथ परोसा जाता है।
1: इसी तरह से एक और रेसिपी हमारे पास आई है, ये मोचार घंटो। और ये बिहारी रसोई में भी बनाया जाता है बंगाली रसोई के साथ साथ। और जिनके भी घर में केले का पेड़ लगा हो वहां केले का गोंद गिरता है, उससे फूल बनता है। और ये इन्होंने रेसिपी बताई है कि उस फूल को निकाल कर सब्जी बनाई जाती है। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा लगती है, लेकिन उसके भीतर पुंग केसर को निकालना पड़ता है और थोड़ा सा एक कसैला भी लगता है। इसे उबालकर बेसिक मसालों के साथ और बिना प्याज लहसुन के बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। उबालने के बाद पिसे हुए चने या मसूर दाल में मिलाकर इसकी पकौड़ियों की तरह बनाकर इसके कोफ्ते भी बनाए जाते हैं।
0: पातिशाप्ता जानती हैं आप क्या होता है? नहीं जानती
1: जी, चलिए बताइए।
0: तो हमारी श्रोता ने यह लिख भेजा है, पातिशाप्ता ये एक तरह की पारंपरिक बंगाली मिठाई है और जो पतले चीले की तरह दिखती है। ये बेहद मीठी और मलाईदार होती है। मुख्य सामग्री इसमें लगती है मैदा, सूजी और चावल के आटे का घोल, जिसमें खोया कद्दूकस किया हुआ, मतलब मावा कद्दूकस करके नारियल और खजूर का गुड़ भरा जाता है। और इसे विशेष रूप से पौष संक्रांति के त्योहार पर सर्दियों में बनाया जाता है।
1: इसी तरह से एचौरा डालना, ये कच्चे कटहल की एक गाढ़ी और मसालेदार तरी वाली सब्जी होती है। इसका स्वाद और बनावट काफी हद तक जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं उनकी तरह, मतलब देखने में लगता है। और इसमें मुख्य सामग्री होती है कच्चा कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बंगाली पंचफूरन के साथ और गर्म मसाले के साथ इसे परोसा जाता है और इसे शाही मटन भी कहते हैं।
0: और जब भी ये सब व्यंजन बनाए आप तो उस समय गाना जरूर सुने, वो भी विविध भारती से। फिलहाल ये गाना सुने।

0: अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों में जुट गई है। रांची में इसे लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने श्री मोदी के 25 वर्षों की सेवा को समर्पित राजनीतिक सफर की चर्चा की और उनके सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धनबाद के कोयला व्यापारी एलबी सिंह की पत्नी आरती सिंह से पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी द्वारा जारी तीसरे समन के आलोक में वह आज ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हुई, जहां ईडी के अधिकारियों ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरती सिंह से पूछताछ शुरू कर दी है। संथाल परगना के जिलों में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा लगातार जारी है। उन्होंने वीरों की भूमि साहिबगंज के भोगनाडीह में छात्र हित में आंदोलन को और धारदार बनाने का बिगुल फूंका है। आज यह यात्रा देवघर पहुंची, जहां से धनबाद और बोकारो की ओर यात्रा प्रस्थान करेगी। श्री महतो ने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज पेंशन दरबार सह सेवानिवृत्ति विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 8 शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के दिन ही उनके समस्त रिटायरमेंट बेनिफिट प्रदान किए गए। और मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान रांची, बोकारो, दुमका, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां जिले में गरज के साथ बारिश की भी संभावना है। विभाग ने वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दूसरा, जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में, इन दोनों को रोका जा सकता है? इनका कोई उपाय है?
2: यस।
1: या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं?

0: तो इसको टाला नहीं जा सकता।
1: एक भ्रम है लोगों में।
0: अच्छा,
1: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है।
0: ओके,
1: ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए। हो सकता
0: है? नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
1: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
0: ओके,
1: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पांस काफी तरह से होता है। सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है। स्टेज वन, स्टेज टू, अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देने होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चांद है।
0: बहुत बड़ा चांद है, सिर पर बहुत बड़ा चांद।
1: तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
0: जी जी जी, ओके।
1: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
0: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाए।
1: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
0: जी,
1: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
0: राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं, इसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं, और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले, और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
1: चाहिए। तभी तो उससे विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
0: हाँ, कि ये रिचनेस आती है, फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है, या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
1: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है, इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल्प का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल्प पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल्प को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है, इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है, अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
0: जी जी,
1: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
0: झाग ज्यादा है तो अच्छा है।
1: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का, हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
0: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा, उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी, ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह, क्या झाग वाला शैम्पू है।
1: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
0: जी,
1: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
0: चले जाएगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है,
1: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो।
0: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो।
1: झाग वाला नहीं चाहिए। अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार। अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है। और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है, कोकोनट ऑयल। से क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है। तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना, वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से।
0: ओके,
1: तो ड्राई नहीं होते हैं।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात है।
1: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए। भले ही आप 2 मिनट के लगाओ, 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए। पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर, मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं, इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए. उसको बोलते हेयर शार्प डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है. वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है.
0: ओके.
1: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है.
0: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है. यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं.

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए
0: जी।
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है, और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के ही शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या

0: बोलते हैं, एक माहौल रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे. रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे है जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
1: हाँ जी,
0: वो तेल से मेंटेन रहती है.
1: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी परंपरा कितनी साइंटिफिक है.
0: साइंटिफिक, तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था. तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं, तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है.
1: जी
0: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है,
0: इकोसिस्टम के हिसाब से. अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने, इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
1: रूखे हो जाते हैं.
0: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहता है, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए. लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है, तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है. तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं. तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है.
1: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए.
0: हफ्ते में 2-3 बार. आप शैम्पू तो हफ्ते में 2-3 बार कर ही रहे हो. और बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल.
1: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
0: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है. आपका मेन कॉज क्या है? अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया, तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला.
1: जी, वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा इकोसिस्टम,
0: ये होलिस्टिक अप्रोच ले करना चाहिए.
1: जी बिल्कुल.
0: दूसरा, मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है.
1: जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए.
0: जो बालों में तेल लगाते, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं, वो कंडीशनिंग करके होता है. सर के स्किन को तेल लगाते हैं, वो इकोसिस्टम इंप्रूव करने का काम करता है,
1: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
0: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं.
1: जी बहुत बढ़िया है. अब यहाँ पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे. सुनते हैं ये गाना.

0: इतने जुल्फों के गाने हम बजा रहे हैं और इतनी इम्पॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। आपने कई ऐसी पॉपुलर मान्यताओं में तोड़फोड़ कर दी जिनको हम मानते थे कि जैसे जहां
1: होता है जैसे आप वैसे ही, जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है,
0: बिल्कुल।
1: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में।
0: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा कि
1: हाँ,
0: इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है।
1: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई,
0: जी
1: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
0: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवीश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए हमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन, संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
0: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
0: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
2: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
0: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
0: और सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
2: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहाँ कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहाँ के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
0: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
2: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
2: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप

0: Ava. What is the word for mother in your mother tongue? Close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify water, flower, sugar? Direction of a clapping sound.
1: Note to the teacher. Sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीइंग विदाउट सीइंग।
3: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
4: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
5: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
6: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
2: और इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
1: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
7: साथियों नमस्कार।
8: नमस्कार साथियों,
7: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
8: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
7: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
8: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आई। वो दोनों चित्रकार थी और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
7: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
9: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
10: ओ सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
9: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
10: यस।
8: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनविच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
7: उसकी

0: मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना,
4: 13, 12, 11। ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4। ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4।
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, Only 4। ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: जॉन्सी,
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे।

0: बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
1: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
1: जोनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।

0: मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
1: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉनसी, मैंने देखा।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
3: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉनसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉनसी, कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
1: जॉनसी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेरमन।
0: ओ गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
4: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
1: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉनसी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस,
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
4: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे।

0: और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जोंसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्य से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है और दावों तथा आपत्तियों को दूर किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज खूंटी जिले के कालामाटी स्थित राजकीयकृत उत्क्रमित सह उच्च विद्यालय परिसर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टर चिपकाकर आम लोगों से नक्सलियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की। पलामू जिले के नौडीहा बाजार पुलिस ने चोरी के विभिन्न मामलों में पूर्व पंचायत समिति सदस्य अवधेश कुमार भुइयां और उसके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर करीब 3 वर्षों में 50 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति की चोरी की है। उनके पास से भारी मात्रा में चोरी के कई सामान बरामद किए गए हैं। और कोलकाता में आयोजित ओपन कराटे चैंपियंस ट्रॉफी में झारखंड के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में उम्दा प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण समेत 4 पदकों पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता के बालक वर्ग के काता स्पर्धा में प्रणीत मोहक मिंज ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि कुमितो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वहीं बालिका वर्ग के काता स्पर्धा में अंजलि कुमारी ने स्वर्ण, जबकि कुमितो स्पर्धा में रजत पदक जीतकर राज्य का परचम लहराया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: यह है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02 और 23 सेकेंड्स।

मेलोडी। यह प्रोग्राम का पहला गाना अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाजों में, फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छी लगने लगी।

0: सानू सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों को आप सुन रहे थे। इस गीत में फिल्म का नाम था आंखें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: चल रहा है फिल्म संगीत का प्रोग्राम इवनिंग मेलोडी, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गाना सुनिए लता मंगेशकर और जॉली मुखर्जी की आवाजों में। फिल्म का नाम है आईना।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत करो। ये साथी संतोष के दिन से जोहार प्रणाम और उम्मीद करो ये कि हमने के किसान भाई बहन कुशल मंगल होती और अपन काम धाम से आके अपन घर में बैठल होती और हमारे कार्यक्रम भी सुनत होती। तो देखा कि कार्यक्रम में जब भी आओ तो हर तरह के जानकारी लेकर आओ ये ताकि किसान भाई बहन के हर प्रकार से फायदा मिल सके और हर प्रकार का जानकारी दे। जैसे कि हो गए खेती बाड़ी संबंधित जो भी खेती बाड़ी संबंधित जो दिक्कत हुए ओकर बारे में बताओ, ये साथ ही कोई विशेषज्ञ रहती ओकर भी जानकारी हम सुना हो, ये साथ ही कोई अनुभवी जो किसान हो होती ओकर भी जानकारी ये कार्यक्रम के माध्यम से सुना हो ये ताकि किसान भाई बहन के हर प्रकार के जानकारी मिल सके और पूरा कोशिश रहो कि जानकारी दी अपन किसान भाई बहन के। तो देखा कि अभी सितंबर के महीना चल रहे हैं और सितंबर के महीना में बहुत सारा काम हो है किसान भाई बहन के, तो हम यही बात कर सितंबर महीना में हो वाला जो काम है ओकर में बता दिया चाहो ये कि देखा कि सितंबर के महीना में रबी फसल की तैयारी कैसे करे चाहिए, सब्जियों की बुआई और खरीफ फसल की देखभाल हमने के ये सितंबर के महीना में करे चाहिए। अगर हम सब्जी के बात करूँ ये तो सब्जी में देखा कि पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियां और जड़ वाली सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां का एक मतलब बोले कि मूली हो गलो, गाजर हो गलो, पालक हो गलो, धनिया हो गलो और शलजम की बुआई करल जाए सितंबर के महीना में। फिर और भी सब्जी की अगर हम बात करिए तो और सब्जी में देखा कि फूलगोभी हो गलो, मटर हो गलो, प्याज हो गलो, फ्रेंच बीन हो गलो, ये सारा चीज हमने के सितंबर के महीना में कर लिए चाहिए ताकि हमने समय से कोई भी काम करवे ना तो बहुत फायदेमंद साबित होता है। और देखा कि और भी फसल के बात अगर हम बात करिए कि हमने फसल लगा देते सबसे बड़ा वो होगा सुरक्षा। अगर हमने सुरक्षा ना करवे तो हमने के फसल नुकसान हो सको है, तो देखभाल भी बीच बीच में करे करे चाहिए। खरीफ फसल में जैसे कि अगर हमने सुरक्षा और देखभाल की बात करिए तो खरीफ फसल में जैसे उगलो धान हो गलो और मक्का हो गलो, जैसे फसलों में कीट और रोग जो लग जाए को निगरानी तुरंत कर लिए चाहिए, तुरंत उचित प्रबंधन करके अपन जो फसल में जो रोग कीट लग गए तुरंत उपचार कर लिए।

चाहिए ताकि कोई भी नुकसान ना हो। और देखा कि निराई गुराई जैसे बात करिए, अभी धान के फसल में देखा कि खरपतवार बढ़े बहुत संभावना बढ़ जाए और ओकर से कहा हो कि फसल के बहुत नुकसान पहुँचो है, तो इस सब पर भी विशेष ध्यान रखे के चाहिए सितंबर के महीना में। और हर प्रकार के ध्यान रखे के चाहिए कि देखा कि हमके किसान भाई बहन बहुत मेहनत से खेती बाड़ी करो थीन और थोड़ा सा असावधानी अगर बरत देती तो कहीं ना कहीं उनके नुकसान हो सको है। फिर हम अगर हम बात करिए कि रबी फसल के तैयारी में से अगेती जो बुआई हो सितंबर के अंतिम सप्ताह में अगर हम बात करिए तो लाही हो गलो, राई हो गलो, सरसों तेल रबी फसल अगेती बुआई के लिए शुरू कर दिए चाहिए। तो ये सब तो देखा कि हम बात कर लिए कि सितंबर महीना में जो भी हमने के किसान भाई बहन के काम करे के चाहिए तो ये सारा काम है जो कि समय रहते कर लिए चाहिए ताकि ओकरन के कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखा कि समय रहते अगर हमने काम कर लिए तो हमने के फसल भी सुरक्षित रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमने के देखरेख भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने देखरेख ना करवे तो कहीं ना कहीं आगे चल के नुकसान हो सको है, तो कोशिश करे के चाहिए किसान भाई बहन के कि समय रहते हर प्रकार के सुरक्षा प्रदान कर लिया चाहिए अपन खेती बाड़ी में। देखा कि कार्यक्रम में और भी बहुत सारा जानकारी लेने के लिए है तो कहीं न जीतीन और अभी सुनतीन एक जरूरी संदेश उकर बाद एक भेंटवार्ता ले लिए। भेंटवार्ता भी देखा कि भी बात करते लिए खरपतवार के बारे में, तो खरपतवार जैसे कि हमने के धान के फसल में खरपतवार बढ़ जाए तो कर कैसे हम तुरंत उपचार करके तुरंत ठीक कर सकोगे उकर लिए एक जानकारी लेके लिए है। तो और जो जानकारी बतावे थे तीन ललिता देवी और हमीन दने से जो बातचीत करे थे तीन वो थे संतोष कुमार दास। तो ये जानकारी सुनने से पहले सुनबे एक जरूरी संदेश उकर बाद फिर हम चर्चा के आगे बढ़ेबे।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: किसान भाई बहन, आज हमारे लिए गांव पबरा और आज हमारे साथ मौजूद है एक सफल महिला किसान। किनसे बातचीत करवे कि कैसे खेती बाड़ी करू थी और खेती बाड़ी करके कैसे अपन घर परिवार के चलाऊ थी, कैसे व्यवसाय के बढ़ेलती, इन सब बात पर चर्चा करवे। तो सबसे पहले तो तुम्हारा हमारे कार्यक्रम में स्वागत हो, साथ ही नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो अपन परिचय बतावा।
2: ललिता देवी पबरा हजारीबाग।
1: पबरा हजारीबाग के रहे वाला हथिन। तो देखा कि ललिता देवी जी, सबसे पहले तो ये जानने चाहबो कि खेती बाड़ी कितना साल से तू कर रहा?
2: 15 साल से।
1: तभी देखा कि बरसात के मौसम है, बरसात के मौसम के अनुसार कौन कौन सा फसल तू लगेला?
2: धान और मक्के
1: लगेला है। तो कितना मतलब लगेला अपन खेत में?
2: 20 किलो मक्के और 40 के 80 किलो धान।
1: 80 किलो धान लगेला है। तो धान में कौन सा किस्म का लगेला है?
2: पनिया और 64वा। अच्छा। और कबरिया।
1: तकन में सबसे अच्छा तो कौन सा किस्म लगलो है?
2: धान के 64वा अच्छा लग।
1: 64वा। तो देखा कि धान के बारे में आप बात कर रहे, खास करके कि सबसे पहले ये बतावा कि धान की खेती जैसे रोपाई हो गए तो रोपाई के बाद विशेष का ध्यान रखे पड़ो ताकि फसल बर्बाद ना हो, ओकर लिए का तू करो, का सोच देखभाल करो?
2: पानी निकल जाए, पानी भर जाए तो निकाले पड़ो है, पानी सक जाए फिर मुंदे पड़ो है, फिर धान में घास हो जाए निकाले पड़ो है, बाकी लगो तो सिनवार के पत्ता से झार के फिर दवा डाले पड़ो है, दवा डाले से फिर देखभाल करो, या फिर अगर लग जाए फिर दोबारे डाले पड़ो है, तकर बाद फिर अच्छा हो जाए तो फिर छोड़ दो, ये फिर यही पानी उनी देखभाल करो ये।
1: तो देखा कि विशेष ध्यान रखो कि जो पानी के जो बहाव है, जो कहीं मिट्टी कट जाए ओकर से पानी में के बह जाए तो ओकर से थोड़ा सा नुकसान हो। तो देखा कि जब धान में घास बढ़ जाए ओकर से का हानि हो? धान
2: जता जाए, धनवा धान फैले ना पा रहा। अच्छा, खाली घासे फैल जाए तो धनवा जता जाए, धान कैसे पैदा होते इतना खटाली ने।
1: तो आप कोशिश करो कि धान में जो घास बढ़ जाए ओकरा निकाल दे ताकि फसल अच्छा से बढ़ सके, आगे बढ़ सके ना। तो फसल कितने दिन में तो तैयार हो जाए?
2: हो जाए 4 महीने, 3 महीना लगो है।

0: फिर 3 महीना के बाद फिर आपन अथी करो ही है।
1: तो देखा कि जो धान के खेती करो है तो आकर में और कौन कौन तुम्हारा सहयोग करो, तुम कौन कौन मिल के करो घर परिवार में?
0: साभे जन करो ये, जितना अथी है बाल बुतरो तथा साभे करो ये मिलजुल के तब हो।
1: तो बहुत अच्छा से तुम मेहनत करो है। तो जब धान रोपनी हो जाए तो ओकर जो बतेला की उस तरफ भी और ध्यान रखो ये। तो धान की खेती में और कौन बीमारी जो लगो है, कौन कौन बीमारी लगो और का लक्षण दिखो कर?
0: पीला हो जाए, ओकर बाद बांकी लग जाए से पतैया चरक चरक हो जाए, तो कने फरोट मारे परो है। ओकर बाद फराट मारे के बाद फिर देखो ये डबल तो फिर डाले परो है, दोबारा डाले परो।
1: तकरा तीन पर दवा रो, कहाँ से दवा अपन तीन मंगाओ?
0: हजारीबाग से।
1: जैसे तू सिंचाई करो है अपन खेती बाड़ी में, तो कहाँ से पानी लाओ, कैसे सिंचाई करो है?
0: अगर पानी मारो है तो भगवान के पानी से हुआ, नहीं तो फिर मशीन थी करके पटा के रोपो ही।
1: तो कौन सी कुआं है, तालाब है, नहर, कौन सी तो इन पास पटवन की सुविधा में?
0: कुआं है, तालाब,
1: तो वहाँ से तुम पटवन कर ले। अगर बरसात के पानी मान ले कि बरसात ना हो ले तो कैसे तुमको नुकसान हो कि तुमके पटवन की सुविधा हो?
0: नुकसान भी हो और पटवे की सुविधा भी है।
1: तो कैसे खेती मतलब पटवन तुम कर ले तो कैसे नुकसान उतना ना हो? और खाद के रूप में क्या क्या डालो अपन खेती में?
0: यूरिया डालो ही है, DAP डालो ही है, ओकर बाद फिर ओकर ने एक घास मरेला दवा डालो ही है, ओकर बाद फिर पोटास वोटास डालो ही है।
1: कैसे बात करवे कि खाद, तो खाद कब कब डाले के चाहिए?
0: एक रोपे समय, ओकर बाद एक 15 दिन के बाद, तकर बाद फिर एक फूटे समय, एक महीना के बाद फिर डाले पड़े।
1: अच्छा, तो खाद में से अपन घरे बनाओ कि खरीद के लाओ से डालो?
0: गोबर डालो ही है, गोबर के अलावे फिर सल्फर डालो ही है।
1: तब मुझे खाद डालो है तो कैसे का फायदा नजर आओ, तो खाद डाले से का फायदा हो धान की खेती में?
0: हरियर भी लगो है देखे, अच्छा भी दे मेथी फूटो है, धान भी छाटो है, सब चीज के फायदा है तबे डालो ही है।
1: जैसे कि सिंचाई के बारे में बात करवा, सिंचाई कब कब करे चाहिए और कैसे करे चाहिए?
0: रते पानी मारो बंद करे परो है नी, और फिर पानी ढेर बढ़ जाए खोल दो ये।
1: तो जैसे कि तरह से तीन सिंचाई करो है, तोर पास सिंचाई करे खातिर कुआं है, तालाब है और नहर है, अगर से तीन सिंचाई कर ले है। तो देखा कि तो इनके पानी की दिक्कत ना हो सिंचाई में, कैसे तीन खेती बाड़ी कर ले। तो बीमारी में से बतेला कि बीमारी में और का का लगो कर कैसे देखभाल करो?
0: वही देखे परो खेत वो घुरबा तो फिर देखभाल की पांडर है, चाहे चरक पत्ते वाला तो करने दवा डाले परो नान के।
1: तो कहाँ से दवा लाओ?
0: हजारीबाग
1: से लाओ। तो मान के चला कि तुहर धान पक जाए, कितना दिन के बाद तुहर धान तैयार हो जाए?
0: अगर नहीं हो जाए धान 3 महीना 2 महीना।
1: अच्छा, तो जब धान पक जाए फसल हो जाए तो फिर अकरा कटाई करो, तकरा बेचो आती?
0: थोड़े बेचो या थोड़े खाए अपन बाल बच्चा के पढ़ा लिखा के ओकर ध्यान देवे को पैसे उसे बेच के।
1: तो कहाँ जाए बेचे खातिर?
0: वही पबरा के लेगो थी हजारीबाग कटकम साड़ी।
1: तो की बहुत अच्छा बतेला कि धान के जब धान रोपाया हो जाए ओकर बाद हमें के किसान भाई में विशेष ध्यान दिए पड़ो है कि धान में किसी प्रकार के कोई बीमारी ना लगे और घास फूस ना बढ़ जाए, ओकर से कहो कि हमने के फसल बर्बाद होवे के संभावना रहो, साथ ही देखो बीमारी भी लगो है तो ओकर भी देखभाल करे के चाहिए, ये सभी बातों पर विशेष ध्यान रखे के चाहिए। ललिता जी जाने चाहो ये की खेती बाड़ी से काहे जुड़ेला, तोरा का फायदा नजर आओ?
0: सब चीज के फायदा,
1: का का फायदा? थोड़ा सा जो किसान भाई जो महिला किसान है तीन वो सब भी सुन के खेती बाड़ी करते हैं, तो हर का नजर में लगो कि खेती बाड़ी करे चाहिए कि ना करे चाहिए, कैसे फायदा है कि नहीं?
0: खेती बाड़ी न हो कि दे अपन बेचे उचे खाए उ के खरीदे न पड़े, अपन पैसा ना रहते तो अपन 2 पैसा बेच देवी 2 किलो तब तो भी दे खाए ले नून तेल हो जाए ने, से सब फायदा है तब न करो थी आदमी करो ही है।
1: बिल्कुल, तो कैसे देखा कि बहुत फायदा नजर आओ खेती बाड़ी करके, अपन घर परिवार चलाओ है और बाल बच्चा भी तो जैसे स्कूल में पढ़ावे खातिर पैसा के एक जरिया बन जाए खेती बाड़ी से। तो जैसे कि अगर बात करवे कि जितना तुम खेती बाड़ी करो तो साल में कितना पैसा हो जाए, आमदनी हो जाए, ऐसा अनुभव है या पता है?
0: 50,000।
1: 50,000 साल में कमा ले है, तो कैसे घर परिवार चल जाए? तो आगे का सोचला है खेती बाड़ी में, कुछ सोचला है कि खेती बाड़ी में और नया नया फसल लगेबे कि ना लगेबे?
0: कैसे ना लगेबे, बूट लगेबे भी, फिर मटर लगेबे, रबे उरीद बरे होला है,
1: उरीद बरे भी लगेबे। और अभी का लगेला धान के साथ?
0: अभी मक्के
1: तो मक्के कितना बड़ा होगा?
0: मक्के अब धन बाल देते हैं।
1: बाल देते अब ओकर पर विशेष ध्यान का रखे मक्के की खेती में?
0: खाली फुरतो बाल देते गदरे तो और फार कर बेचना और खाना।
1: तो कहाँ पर बेचो है?
0: हजारीबाग।
1: हजारीबाग में सभी फसल?
0: सभी।
1: तो कैसे कितना कमा ले है मक्के के?
0: कमा लो ये जैसन अथी हो थी 5,000 10,000 5,000 जैसन रहो
1: जैसन रेट रहे वैसन तीन कमा ले। तो अंतिम में देखा कि जानल चाहबो कि जे हमर की महिला किसान हिथिन ये भाई बहन हिथिन जे खेती बाड़ी करे चाहू थीन तो काम में जुड़ना चाहिए कि ना जुड़ना चाहिए? अगर से फायदा है कि नहीं?
0: फायदा है, जुड़ना चाहिए।
1: जुड़े चाहिए। तो ललिता जी देखा कि हमर कार्यक्रम में अला और बहुत अच्छा अच्छा जानकारी दिला धान के खेती के बारे में और अपन बेशकीमती समय दिला और लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक, धन्यवाद।
1: तो देखा कि कितना बेस जानकारी सुनली और जानकारी है लेकिन धान के फसल में खर पतवार के कैसे नियंत्रण करल जाए और कैसे बीच में देखभाल भी करे चाहिए। कह के देखा बहुत मेहनत से कोई भी किसान खेती बाड़ी करू थीन और थोड़ा सा अगर असावधानी बरत देती तो कहीं कहीं जाके नुकसान हो सको है। और बहुत अच्छा बात बोलते हैं महिला किसान हिलथिन और महिला होके अच्छा खासा खेती बाड़ी कर लेतीन और अच्छा आमदनी भी कमा रहती। तो हमारा उम्मीद है कि हमने के किसान भाई बहन सुन के जरूर जागरूक होतीन और जो महिला किसान होतीन वो भी जागरूक होकर खेती बाड़ी से जुड़तीन। और एक नाम हिले ललिता देवी और हम इंद्र से बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार दास। तो बड़ा बेस जानकारी हिले और जानकारी के बाद हम सुनोई एक बहुत अच्छा लोकगीत तो फिर हम चर्चा के आगे बढ़ेबे।

तो देखा कि कितना बेज कितना सुन लिया और अब हम चर्चा के आगे बढ़ा हुई कि देखा कि अभी के समय में जिस प्रकार से जल संरक्षण जरूरी है, कहीं मतलब जल संरक्षण आज की आवश्यकता है और हमारे और हमारे आवे दिन के लिए सुरक्षित नहीं है, तो जल संरक्षण हमने के करे चाहिए अगर बहुत ही महत्व है। और देखा कि आज की जरूरत के अनुसार जिस प्रकार से भू स्तर जो तेजी से जो गिर रहा है, अगर ये इसलिए है कि पानी की एक बूंद बूंद बचाना अनिवार्य हो गए है। और दूसरा भी कल की सुरक्षा है, यदि आज हमने पानी बचा लिए तबे हमने आवे वाले पीढ़ी के जीवन के लिए पर्याप्त जीवन मिल सको। तो देखा कि पानी के हमने के हमेशा बचाव करे के रहे चाहिए। और अभी देखा कि बरसात के मौसम है और बरसात के मौसम के अनुसार जब भी पानी इधर उधर बह जाए तो कोशिश करे के चाहिए किसान भाई बहन के या डोभा के निर्माण कर लेते हैं या छोटा सा तालाब के निर्माण कर लेते हैं ताकि ओकर से पानी के हमें संग्रहित करके आवेले दिन के लिए हमें बचा सको। ये अभी सबसे बड़ा समस्या वो है कि खेती बाड़ी में सिंचाई के लेके जो भी किसान भाई बहन के बहुत सारा दिक्कत हुआ है और मौसम आधारित खेती बाड़ी करो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो अगर हमने पानी अभी से बचा के चलिए तो अवेला दिन के लिए हम इनके बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। तो कोशिश करें चाहिए किसान भाई बहन की कि हम अपन पानी के बचा के रखिए ताकि भविष्य में हम इनके काम आते हैं, हमारे जो परिवार है नौकरी के काम आते हैं। तो कुछ कुछ बात है जो कि हम इनके करे चाहिए। सबसे पहली बात है कि हम कोई नल अगर हम चालू कर दिए तो और चालू करके छोड़ दिए ओकर से कहा कि बेवजह पानी में इनके बर्बाद हो जाए और ओकर से हमने एक नुकसान है। तो कोशिश चाहिए कि जितना ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करके नल तुरंत बंद कर दिया चाहिए। और जो बरसात के जो पानी हुआ वो कोई टैंक खोक लो या गड्ढा खोद के अगर हम जमीन के अंदर में घुसा के रखो ये तो इस तरह से पानी के बचाव करल जा सको। और दूसरी बात है कि पानी के जो बर्बादी हुआ है वो सबसे भी हम इनकी कोशिश करे चाहिए कि रोके चाहिए। और कहीं कहीं पर देखे कि कहीं कहीं पाइप लीकेज हो गलो तो वहाँ से पानी बर्बाद हो जाए, तो बहुत सा ऐसा चीज़ है जगह से पानी बर्बाद हो तो इस सबसे बर्बादी से रोके चाहिए ताकि अवेला भविष्य के लिए हम इनके सुरक्षित रहे पानी। और जैसे कि सबसे बड़ी बात है पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए किसान भाई बहन के ताकि के पेड़ लगाव से फायदा हुआ है कि मौसम आधारित अच्छा बारिश होते है, वातावरण भी शुद्ध रहता है और हमने के जीवन अच्छा बीतते है। तो पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है और कोशिश करे चाहिए कि हर अगर जमीन है अगर आसपास में थोड़ा सा भी जमीन है जहाँ पर पेड़ लगा के अपन तो वातावरण के सुरक्षित कर सको है। और आवेला दिन ये पेड़ कटाई के कारण वर्षा बाधित हो जहाँ पर वर्षा ना हो पाओ है तो पेड़ लगाने से ही फायदा होता है कि आवेला दिन में बारिश अच्छा खासा होते है और अच्छा हम पानी के बचत कर सको। ये तो बहुत ऐसा बात है जगह से हमने के किसान भाई बहन कोशिश करे चाहिए। और देखे कि पानी के बचत में सबसे बड़ा चीज है टपक विधि। टपक विधि में देखा कि हमने के किसान भाई बहन पहले परंपरागत विधि से खेती बाड़ी कर रही थी तो मोटर से प्रयोग करके पटवन कर रही थी। ओकर में सबसे बड़ा दिक्कत ये हो कि बेवजह पानी बर्बाद हो जाए, जितना जरूरत ना ओकर से ज्यादा पानी चल जाए। दूसरी बात नुकसान ये भी हो कि फसल सड़ जा है जगह से किसान भाई बहन के नुकसान हो जा है। अभी काफी ड्रिप इरीगेशन करे से जितना पानी जितना चाहिए पानी उतना ही मात्रा में टपक विधि के द्वारा से जड़ में जाए पानी और ओकर से कहा कि हमें के जो जितना पानी जरूरत है फसल में उतना ही पानी जाए, पानी के बचाव हुए बेवजह पानी बर्बाद ना हुए। और सबसे बड़ी खास बात होकर में है कि खरपतवार से भी बचत हो और फसल के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक चीज है खरपतवार जो कि हमने के फसल के आगे बढ़े ना और विकसित ना मिल दे और कहीं कहीं जाके नुकसान करो हमने के फसल के। तो इस सब पर विशेष ध्यान दे चाहिए किसान भाई बहन के कि हम समय समय समय रहते हुए हर काम करिए ताकि हमें के फसल सुरक्षित रहे। और जब सुरक्षित अच्छा रहता है फसल उत्पादन अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है कि आमदनी अच्छा खासा होता है। और जब आमदनी अच्छा तक तो अपन व्यवसाय और भी बढ़ा सको जैसे कि खेती बाड़ी के अलावा तो और भी व्यवसाय से मुर्गी पालन लो गाय पालन हो लो और बत्तख पालन हो लो बहुत ऐसा व्यवसाय है जगह करके तो अपन आमदनी के दुगना कर सको। तो ये सब विशेष ध्यान दिए चाहिए किसान भाई बहन के ताकि उनके लाभ मिल सके। तो देखा कि ये तो अगला बातचीत तो आज के मौसम भी हम किसान भाई बहन के बता दिए चाहिए कि आज के तापमान जो अधिकतम है 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है
24 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता के बात करिए तो 93% आज के मौसम हो गए। तो देखा कि हमने हर तरह के जानकारी अपन किसान भाई बहन के दिलिए, और देखा सबसे पहले हम बतेलिए कि सितंबर माह में किस प्रकार से खेती बाड़ी करे चाहिए, कौन कौन से फसल लगावे के चाहिए, कौन तरीका से लगावे चाहिए, ये सारा बात अपन किसान भाई बहन के बतेलिए। फिर एक भेंटवार्ता सुन लिए धान के फसल में खरपतवार के नियंत्रण हम कैसे कर सकूए, ये सारा जानकारी अपन किसान भाई बहन के बतेलिए, और जल संरक्षण के लिए भी अपन किसान भाई बहन के बतेलिए। तो हमारा उम्मीद है कि किसान भाई बहन जरूर सब अपने दिन और कोशिश करते हैं कि बरसात के मौसम में जहाँ जगह कम से कम एक पेड़ जरूर लगे थी, का आवे वाला भविष्य के लिए हम इनके लिए बहुत उपयोग साबित होते हैं। जिस प्रकार से अभी देखा कि दिन ब दिन ये हम इनके पेड़ पौधा कटाई हो रहे और ओकर से देखा कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहे, तो उस सबसे हम इनके बचावे के चाहिए और कोशिश करे के चाहिए अपन खेती बाड़ी में कि घरेलू खाद के प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं घरेलू खाद करे से फायदा ये कि पर्यावरण प्रदूषित से हो तो बचा सको, साथ ही जो फसल है हमने के स्वस्थ रहते हैं, और जगह खाद से हमने के किसान भाई भी स्वस्थ रहते हैं और जैविक रहते हैं, शरीर स्वस्थ होते हैं। अभी देखा कि किसान भाई अधिक उत्पादन करे खेती लिए रासायनिक खाद के ज्यादा प्रयोग करो थी, भले फसल अच्छा खासा हुआ लेकिन अगर धीरे धीरे देखवा तो मिट्टी में पोषक तत्व कमी होते जा रहे, एक दिन जाके भूमि बंजर हो जाए और खेती करे लायक जमीन ना रह पाए, तो इस सब विशेष ध्यान रखे चाहिए। और एक बात सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमें के मिट्टी के जांच समय समय पर करावे चाहिए, ताकि किसान भाई बहन के हर प्रकार से जानकारी मिल सके कि एकर में पोषक तत्व कितना कमी है, कितना मात्रा में हमने दिए चाहिए, ये सारा जानकारी हम इनके रखे चाहिए। और अगर जानकारी न हो है तो कहीं कृषि विज्ञान केंद्र चल जाती वहां पर जानकारी हासिल कर सको तीन, या तो कोई अनुभवी किसान है तीन ओकर से भी जानकारी कर सको तीन। तो देखे कि हम उम्मीद है कि जानकारी सुनकर हमने के किसान भाई बहन जरूर लाभ लेती। अब घड़ी के देने देखो ये तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से विदा लिए समय आगले है, तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमारा संतोष भाई के अनुमति देती। जोहार।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:59 और 22 सेकेंड्स। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: 50 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों में जुट गई है। रांची में इसे लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने श्री मोदी के 25 वर्षों की सेवा को समर्पित राजनीतिक सफर की चर्चा की और उनके सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की गिरिडीह शाखा ने डुमरी विधायक जयराम महतो के अमर्यादित बयान की निंदा की है और प्रदेश एसोसिएशन के निर्णय का समर्थन लिया है। आज गिरिडीह में प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के सचिव भरत सिंह सिकरियाल और उपाध्यक्ष सत्येंद्र पासवान ने कहा कि विधायक द्वारा बरवाड्डा थाना प्रभारी के साथ दूरभाष पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर पुलिस की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार कल शाम 4 बजे रांची के धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान 2 और 3 सितंबर को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वोटर रजिस्ट्रेशन एंड वोटर रजिस्टर्स की जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय की विशेष एंटी करप्शन ब्यूरो की अदालत ने आज तत्कालीन विश्रामपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रमेश चंद्र प्रसाद को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एसीबी के स्पेशल सेल की अदालत ने अभियुक्त को 5 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 25,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
2: यह है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर।

तभी सखियां स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। बहनों, कहा जाता है कि एक बालिका को शिक्षित करना एक पूरे परिवार को शिक्षित करने के समान है। शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि सोचने समझने, सही निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास भी देती है। आज के समय में बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, खेल और तकनीक, हर क्षेत्र में वे सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हर बालिका को समान अवसर, सुरक्षित वातावरण और अच्छी शिक्षा मिले। एक शिक्षित बेटी अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझती है, अपने स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति जागरूक होती है और आगे चलकर अपने परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। मैंने बालिका की शिक्षा केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता का रास्ता नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्रगति का आधार होता है। जब एक बेटी पढ़ती है तो उसके साथ उसके सपने, उसके परिवार की उम्मीदें और समाज का भविष्य भी आगे बढ़ता है। इसलिए बेटियों की शिक्षा को केवल उनकी जिम्मेदारी न मानकर परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी समझना होगा। आइए हम सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जहां बेटी को बोझ नहीं, बल्कि परिवार और समाज की ताकत समझा जाए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।

0: कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: प्रोग्राम में गीत और संदेश के बाद अब आपको ये सुनवा रहे हैं वार्ता। पुनः प्रसारित ये वार्ता है विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान विषय पर। वार्ताकार हैं देविका वर्मा।
2: विज्ञान की दुनिया ने मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया है, वो चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाका। जब हम किसी चिकित्सक के पास अपना इलाज करवाने इस विश्वास के साथ जाते हैं कि वहां हमारा इलाज होगा और हम पूर्ण स्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को, तो ये विज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र होता है। इसी प्रकार हम छोटे बड़े उद्योगों में तथा कृषि के क्षेत्र में आधुनिक संसाधनों के साथ उत्पादन करते हैं तो वहां भी क्रियात्मक विज्ञान है। ये विज्ञान की ही देन है जिसने टेलीविजन, मोबाइल फोन तथा संचार के आधुनिक संसाधनों के माध्यम से इतने बड़े विश्व को लघु बना दिया है।

0: आज नए भारत की बात हर ओर सुनाई देती है और नजर घुमाकर देखें तो हमें नए दौर का भारत नजर भी आता है। बहनों, यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी देश के समग्र विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षा का ही एक महत्वपूर्ण अंग है विज्ञान। बहनों, विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान के अतिरिक्त अंतरिक्ष विज्ञान, भू विज्ञान, कंप्यूटर साइंस आदि। शिक्षा सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सुशासन के साथ आवश्यक आर्थिक विकास को संतुलित करने का प्रयास करती है। सदियों से देश विदेश में लड़कियां शिक्षित होकर विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपना सफल योगदान दे रही हैं। यदि लड़कियां हवाई जहाज में पायलट हैं, तो वे रेल में लोको पायलट हैं। अगर वे कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर चला रही हैं, तो वे सड़कों पर ऑटो रिक्शा भी चला रही हैं। लड़कियां सेना की तीनों टुकड़ियों के साथ हर सैनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं और वे कामयाब भी हैं। भारत की पहली महिला पुलिस ऑफिसर आईपीएस किरण बेदी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। लड़कियों तथा महिलाओं के विज्ञान के क्षेत्र में उनके मेहनत तथा लगन के लिए समय समय पर कई उपाधियों से सम्मानित किया जाता रहा है। उदाहरण दे सकते हैं, वर्ष 2024 में जब डॉक्टर पूर्वी सौकिया को, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और वो वनस्पति विज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा का नाम लिया जा सकता है। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा को पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा को इस दुनिया में लाने का श्रेय दिया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कादिम्बिनी गांगुली का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। डॉक्टर गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर बिहार राज्य में हुआ था। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए नई राह बनाई। उस समय जब महिलाओं व लड़कियों का अस्पताल जाना भी शर्म की बात मानी जाती थी, वैसे समय के रूढ़िवादी समाज में डॉक्टर गांगुली घर से निकलकर रोगी लड़कियों व महिलाओं का इलाज करने के लिए अस्पताल जाती थी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया था। बहनों, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के कई मिसाल मेरी स्मृति में है। उनमें से एक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दुनिया भर में नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वप्रथम योगदान देने वाली कोई बालिका है तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में 1820 में हुआ था। बाद में उन्हें ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त हुई थी। नर्सिंग की पढ़ाई समाप्त करने के बाद नाइटिंगेल नर्सिंग पेशे से जुड़ गई और बीमारों की सेवा करने लगी। वो कहती थी, मेरा जन्म मानव सेवा के लिए हुआ है और ये मेरा धर्म भी है। इसी सिलसिले में 19वीं सदी के दौरान हुए क्रीमिया युद्ध में वो घायल सैनिकों की सेवा करने बैरक में जाती थी। रात के अंधेरे में उनके हाथ एक लालटेन होता और उसी की रोशनी के सहारे वे रोगी और घायल सैनिकों की सेवा किया करती थी। वो अपने हाथों बैरकों की सफाई करती, सैनिकों के लिए भोजन तैयार करती तथा उनका मरहम पट्टी करती। उनके साथ लगभग 38 स्त्रियों का एक छोटा सा दल रहता था। फ्लोरेंस को लेडी विद अ लैंप का नाम दिया गया था। उनकी प्रेरणा पाकर नर्सिंग सेवा से लड़कियां जुड़ने लगी। आज भी नर्सिंग पेशे से जुड़ने के पहले नियम के अनुसार नर्सें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम की सौगंध खाकर पूरी सेवा अवधि को ईमानदारी से निभाने का वादा करती हैं। उनके नाम के साथ का लैंप इस धरती पर हमेशा चमकता रहेगा। बहनों, रेडियम का नाम आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा। रेडियम एक रेडियोधर्मी धातु है। इसका मुख्य उपयोग कैंसर के उपचार में एक रेज के रूप में होता है। इसकी खोज भौतिकविद एवं रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी ने की थी। पोलैंड के वारसा में जन्मी मैरी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रतिभा दिखाई तथा रेडियम की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें रसायन विज्ञान में अध्ययन तथा खोजों के लिए दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहनों, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का नाम लिया जाता है। कल्पना चावला ने कल्पना से भी आगे की उड़ान भरी। उनका जन्म भारत में हुआ था। कल्पना चावला कहा करती थी, मेरा जन्म अंतरिक्ष के लिए हुआ है और मैं अंतरिक्ष के लिए मरूंगी भी। जब किसी ने कल्पना से प्रश्न किया था कि आप वैज्ञानिक अंतरिक्ष क्यों जाती हैं, तो उनका उत्तर था, हम अंतरिक्ष यात्री का अंतरिक्ष जाने के पीछे कई उद्देश्य होते हैं, उनमें से एक है वहाँ रिसर्च करना। पृथ्वी की अपेक्षा अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण हमें वहाँ रिसर्च करने में सुविधा होती है। कल्पना चावला बचपन से ही हवाई जहाज तथा अंतरिक्ष विज्ञान में गहरी रुचि दिखाती थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से करने के बाद वे नासा रिसर्च सेंटर में एक शोधकर्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1997 में कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया से अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। उनकी दूसरी और अंतिम अंतरिक्ष यात्रा 2003 में STS-107 मिशन के साथ हुई थी। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय फरवरी 2003 को कोलंबिया शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कल्पना की मृत्यु हो गई। उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनकी लगन तथा जुझारू प्रकृति के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाली सुनीता विलियम्स को हम कभी नहीं भूल सकते। भारतीय मूल की प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका में हुआ था। उन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में महिलाओं द्वारा सबसे अधिक बार स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम धैर्य और आत्मविश्वास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। यह सत्य भी है। हमारे पर्यावरण को संतुलित और सुरक्षित बनाए रखने में नदियों, सागर, महासागरों से लेकर तालाब, डोभा, जलकूप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर किसी साल वर्षा नहीं होती है तो पृथ्वी पर कई प्रकार के नुकसान होते हैं, जीना कठिन हो जाता है। अतः हमें जल संग्रह की सुरक्षा पर ध्यान देनी चाहिए। नदियों में बनाए गए बांध की भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत की एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली समाज सेविका तथा पर्यावरणविद मेधा पाटकर को नर्मदा घाटी की आवाज के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। बहनों, एक शिक्षित जन समुदाय ही उत्साहशील और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। शिक्षा वह मूल मंत्र है जो प्रेरणादायी है। लड़कियों को स्कूल तक लाने की कोशिश तथा यह भी कोशिश कि सारी लड़कियों का स्कूल में नामांकन कराया जाए और वह बीच में पढ़ाई न छोड़ दे, इस प्रयास के लिए सरकारी समितियों द्वारा कई सुबदलाव भी किए गए हैं। गैर सरकारी संगठन भी इस पथ में उत्साहजनक योगदान कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को भारतीय गांवों में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को मुख्य धारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। बहनों, वैज्ञानिक व्यक्तित्व तथा वैज्ञानिक आविष्कार ने मानव जीवन को इतनी सुविधाएं दी हैं जिससे हमारे समय और श्रम की काफी बचत होती है। हम विज्ञान के ऋणी हैं और सदा इसके ऋणी रहेंगे।
1: और अब बहनों, हम कार्यक्रम में बात करेंगे 1 से 7 सितंबर तक मनाए जा रहे पोषण सप्ताह के अवसर पर महिला स्वास्थ्य और पोषण की, क्योंकि बहनों स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की आधारशिला है। अक्सर महिलाएं परिवार के सभी सदस्यों के खानपान का ख्याल तो रखती हैं, लेकिन अपने भोजन और स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। हमें इस आदत को बदलना

इसलिए आयरन युक्त भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, चना, दालें, तिल, गुड़ आदि को आहार में जरूर शामिल करें। आयरन के साथ विटामिन सी युक्त चीजें जैसे नींबू, आंवला और अमरूद लेना भी लाभकारी है। और हाँ बहनों, स्वच्छता भी अच्छे स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजन बनाने और खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, साफ पानी पिएं और भोजन को ढक कर रखें। महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए बहनों, सही पोषण बेहतर स्वास्थ्य की पहचान, स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार की जान। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, साथ ही ये गीत सुनते रहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम आंगना। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

काल फिल्म का ये गाना था आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा की आवाजों में। कार्यक्रम है फिल्म संगीत और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की हजारीबाग केंद्र से। मिशन कश्मीर सुनवा रहे हैं इस फिल्म से अगला गाना, शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला और सुनिधि चौहान की आवाजों में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

चौहान और विशाल ददलानी की आवाजों को आप सुन रहे थे। इस गीत में फिल्म था 30 मार खान। और अब अगला गाना दलेर मेहंदी, सुदेश भोसले और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है मृत्युदाता।

0: कथा कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:54 हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल प्रसारण होगा हमारे रांची केंद्र से।
1: थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
3: अच्छा।

0: और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी वो दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
5: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल ने रांची में सेवा सदन के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित, अस्पताल के कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण इलाज की सराहना की। प्रदेश भाजपा का 17 सितंबर से राज्यव्यापी सेवा संकल्प अभियान, रांची में आयोजित कार्यशाला में नेताओं ने कहा प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की सेवा और सुशासन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। कई राज्यों में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में अलर्ट, आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश, जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी। राज्य के कई जिलों में 2 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान, तापमान में गिरावट के आसार, लगातार बारिश से खरगई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार। और कोलकाता में संपन्न ओपन कराटे चैंपियंस ट्रॉफी में राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में किया उम्दा प्रदर्शन, 2 स्वर्ण समेत 4 पदकों पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।
7: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप पूर्ण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
6: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के नागरमल मोदी सेवा सदन के 69वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा सेवा केवल उपचार नहीं बल्कि मानवीय गरिमा और सामाजिक जिम्मेदारी से भी जुड़ी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1958 में मातृत्व गृह के रूप में शुरू हुई यह संस्था आज बहुविशेषता अस्पताल के रूप में विकसित हुई है। राज्यपाल ने आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों की सराहना की। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों में जुट गई है। रांची में इसे लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इस दौरान विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने श्री मोदी के 25 वर्षों के सेवा को समर्पित राजनीतिक सफर की चर्चा की और उनके सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
8: इसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 25 साल का नेतृत्व पूरा हो रहा है और 17 सितंबर को आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन भी है और प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाके योजना एक महीने का है, एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा।
6: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने इंटरमीडिएट स्तर की कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता धारक पद के लिए प्रस्तावित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने इन दोनों विज्ञापनों के तहत विज्ञापित सभी अधियाचनाएं वापस ले ली हैं।

0: आयोग ने भर्ती संबंधी अपने विज्ञापन को निरस्त करने का निर्णय लिया। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के क्रम में आज देवघर पहुंचे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि रांची में छात्र आंदोलन खत्म करने के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रों को छला गया। श्री महतो ने छात्रों और युवाओं से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।
1: हमारी मांगों पर मुहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मांग है ये व्यक्तिगत मेरा मांग नहीं है, यह मांग झारखंड के प्रत्येक घर घर के युवाओं का, छात्रों का, माता पिताओं का मांग है। आज संथाल परगना प्रमंडल का भले जिला अंतिम है यात्रा में, लेकिन यह संघर्ष आगे जारी रहेगा।
0: देश के कई राज्यों में H1N1 और H3H2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के मद्देनजर झारखंड स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हालांकि राज्य में अभी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने और अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने, मास्क पहनने और भीड़ से बचने की सलाह दी है। साथ ही जानकारी के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में SIR की प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है और दावों तथा आपत्तियों को दूर किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज खूंटी जिले के कालामाटी स्थित राजकीयकृत उत्क्रमित सह उच्च विद्यालय परिसर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान फुदी ग्राम पंचायत की मुखिया अनिमा कच्छप ने बताया कि शिविर के दौरान अनमैप्ड मतदाताओं की विसंगतियों को दूर किया गया।
2: जितने भी हमारे गांव के, हमारे पंचायत के लोग हैं, उनका जो घन पुनरीक्षण हो रहा है SIR में, उनका नाम ना छूटे और जितनी भी त्रुटियां हैं, जितनी भी विसंगतियां हैं, उनको लेकर लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी।
0: गिरिडीह स्थित मरांग बुरु पारसनाथ पहाड़ पर जैन समुदाय के दावे को लेकर आदिवासी समुदाय का विरोध तेज हो गया है। मरांग बुरु बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि न्यायालय ने संथाल आदिवासियों के प्रथागत और पुरखौती अधिकार को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार की ओर से किसी एक समुदाय के पक्ष में विशेष व्यवस्था संबंधी एक तरफा आदेश जारी करना उचित नहीं है।
3: हाल के दिनों में जैन समुदाय के द्वारा बार बार यह दावा किया जा रहा है कि संपूर्ण पारसनाथ पर्वत हमारा है। मैं उन सभी जैन समुदाय के लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मरांग गुरु बचाओ संघर्ष मोर्चा यह मांग करती है आने वाला समय में उच्च स्तरीय जांच हो और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
0: राज्य के कई जिलों में 2 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोहरदगा और खूंटी समेत 5 जिलों में कहीं कहीं आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा रांची और कोडरमा समेत 9 जिलों में भी भारी बारिश के आसार हैं। कल और 2 सितंबर को भी रांची समेत 7 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। सरायकेला खरसावां जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। कोलकाता में संपन्न ओपन कराटे चैंपियंस ट्रॉफी में झारखंड के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में उम्दा प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण समेत 4 पदकों पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता के बालक वर्ग के काता स्पर्धा में प्रणीत मोहक मिंज ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि कुमितो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वहीं बालिका वर्ग के काता स्पर्धा में अंजलि कुमारी ने स्वर्ण, जबकि कुमितो स्पर्धा में रजत पदक जीतकर राज्य का परचम लहराया। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल ने रांची में सेवा सदन के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। अस्पताल के कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण इलाज की सराहना

0: की। प्रदेश भाजपा का 17 सितंबर से राज्यव्यापी सेवा संकल्प अभियान रांची में आयोजित कार्यशाला में नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की सेवा और सुशासन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। कई राज्यों में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में अलर्ट आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश। जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी। राज्य के कई जिलों में 2 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। तापमान में गिरावट के आसार। लगातार बारिश से खरगई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार। कोलकाता में संपन्न ओपन कराटे चैंपियंस ट्रॉफी में राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में किया उम्दा प्रदर्शन। 2 स्वर्ण समेत 4 पदकों पर जमाया कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बहू जी मम्मी, बहू जी मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
2: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी वो दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: हम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत देश भर के युवाओं और खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। चतरा जिले के चतरा कॉलेज चतरा और सिमरिया कॉलेज में खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मौके पर जिला युवा पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार ने कहा कि
2: हमारे जिला में दो स्थानों पे खेलो युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम जो है वो चतरा कॉलेज चतरा में हुआ। प्रोग्राम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री के संबोधन से हुआ। उन्होंने युवाओं को एड्रेस किया। प्रधानमंत्री का संदेश, प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, युवाओं को देश में बदलते स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स के फील्ड में युवा कितना कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, उनका योगदान और स्पोर्ट्स कैसे जीवन को सेव करता है, इन सब बातों पे काफी डिटेल्ड प्रधानमंत्री जी का चर्चा रहा युवाओं के साथ। इसके बाद चूंकि यह एक संवाद कार्यक्रम था तो युवाओं ने QR कोड और आइडिया बॉक्स के माध्यम से देश के बदलते स्पोर्टिंग कल्चर और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसमें उन्होंने सुझाव भी दिए।
1: चतरा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल कौलेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण का काम दिसंबर के महीने से शुरू होगा। पर्यटन सचिव से भेंट के बाद चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रोपवे का काम पूरा होने के बाद धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। चतरा से लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जनार्दन पासवान को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी भी सौंप दी है। नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि
3: निश्चित तौर पे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी को हम निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से लोक जनशक्ति पार्टी को पूरे प्रदेश में अभियान चला करके और एक आध महीने के अंदर में दिखाई पड़ने लगेगी कि लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ झारखंड में बहुत बहुत अच्छा, बहुत बेहतर संगठन चल रहा है।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच द्वारा शुरू की गई भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के दौरान चतरा पहुँचे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि
4: दोबारा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अनियमितताएं नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा पेपर लीक भ्रष्टाचार अनियमितताएं होती है तो उसको पकड़ा जाए और उसको आजीवन कारावास दिया जाए। फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम से लेकर परिणाम से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक हर चरण का जवाबदेही और निष्पक्षता गोपनीयता तय किया जाए, नहीं तो अब हम लोग रुकने वाले नहीं है। अभी हम लोग भूख हड़ताल से आए हैं, सत्याग्रह से आए हैं। हम लोग का आंदोलन सरकार से जीत करके आए हैं, लेकिन सरकार अपने लिपापोती कर रही है, कोर्ट के माध्यम से छात्र को हराना चाहती है। अगर सरकार है तो ये 2400 जिला का भ्रमण कर रहे हैं और आज इस इटखोरी की धरती से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हम लोग अपना जान प्राण त्याग के भी हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।

0: खाद की कालाबाजारी दूर करने के लिए चतरा जिले में 23 सितंबर से फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल नाम की नई डिजिटल मोबाइल ऐप व्यवस्था शुरू की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि
1: खाद पे हमारा चतरा जिला पे कीमतों पे नियंत्रण रखा जा रहा है, टीम बनाकर जाँच की जा रही है, दुकानों को देखा जा रहा है और जाँच किया जा रहा है, और जहाँ भी गलतियाँ चाहे अनियमितता पाई जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
0: चतरा जिला व्यवहार न्यायालय में शनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 425 वादों का निपटारा किया गया। वहीं सरकार को 34 लाख रुपए से अधिक की राजस्व की प्राप्ति भी हुई। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
2: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी योजना। संकलन और वाचन प्रकाश कुमार राणा, प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।
1: श्रोताओं, क्या आप रोजगार की तलाश में हैं? और यदि आप में कार्य करने के लिए कौशल विकास, हुनर की कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वैसे युवाओं के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं बैंकों की संयुक्त भागीदारी से हर जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हजारीबाग जिले की इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान यानी RCT की। यहाँ निशुल्क सहायता की जाती है आपको कुशल और निपुण बनाने में, बैंकों से ऋण लेने में, एक सफल उद्यमी बनाने में, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं RCT यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की विशेषताएं और कार्यविधि के बारे में। इसी संदर्भ में हमारे साथ हैं RCT हजारीबाग के वासुदेव कुमार जी, जो कि वरिष्ठ प्रशिक्षण समन्वयक हैं। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद
1: वासुदेव जी। हम आपके RCT सेंटर में हैं, तो आप बताएं कि RCT है क्या।
2: RCT बेसिकली ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार और बैंक की सहायता से हर एक जिले में, देश के हर एक जिले में चलाया जाता है। इसका विस्तार रूप है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, और ये हजारीबाग में इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित है और इसको इंडियन बैंक पूरा खर्च वहन करती है।
1: RCT यानी कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की क्या क्या उद्देश्य या विशेषताएं हैं?
2: बेसिकली ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र से जो लोग होते हैं उसको स्वरोजगार से जोड़ना।
1: अच्छा।
2: और उनको जोड़ के उसका रोजगार मुहैया कराना, बैंकों से ऋण मुहैया करवाना, ये इसका बेसिक उद्देश्य है।
1: ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसे BPL परिवार रहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पाता है, कौशल की कमी होती है, और रोजगार मिल भी जाती है तो बहुत कम दरों पे वे काम करते हैं। यदि हाथों में हुनर हो तो उन्हें अपना स्वरोजगार या तो कहीं काम करते तो उन्हें अधिक फायदा होगा या अधिक पैसे मिलेंगे, है ना, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि RCT की क्या क्या खूबियां हैं जो लोग आपसे जुड़ते हैं, युवा आपसे जुड़ते हैं।
2: RCT में जुड़ने का मुख्य उद्देश्य या फिर युवा जो आकर्षित होते हैं हमारी ओर, क्योंकि यहाँ पे RCT में बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: अच्छा।
2: ये आवासीय है पूर्ण रूप से, यहाँ पे रह करके रहना खाना फ्री में है, ट्रेनिंग फ्री में, ट्रेनिंग का जो साजो सामान है वो फ्री में दिया जाता है।
1: अच्छा।
2: प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों को निःशुल्क पोशाक दिया जाता है, छात्रावास में रहने की व्यवस्था दिया जाता है, और विभिन्न उद्यमी के गुण कौशल को उनको अर्जित करने का तरीका, क्या क्या कौशल है, आप भविष्य में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसको उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है। उसके जो हमारे क्षेत्र में जो लोग कुशल प्रशिक्षक होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है।
1: अच्छा।
2: योग्य प्रशिक्षक द्वारा दिया जाता है। हमारे यहाँ कम अवधि का प्रशिक्षण और एक दिन में एक

0: दिवस में मिनिमम कम से कम 8 घंटा का प्रशिक्षण दिया जाता है उनको। प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों को 2 वर्ष तक का बैक सपोर्ट करते हैं, पीछे से उसका सपोर्ट करते हैं कि क्या समस्या है, स्वरोजगार स्थापित करने में क्या समस्या आ रहे हैं हमें बताइए, हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जाता है। वो सारा JSLPS की दीदी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें लोगों को बैंक के बारे में, बैंकिंग के बारे में, बैंक हमें क्या क्या सुविधाएं देती है, क्या क्या सरकार की योजनाएं चल रही है, उसके बारे में समूह में जाकर के वो लोगों को बताती है। हम यहाँ मास्टर प्रशिक्षक तैयार करते हैं, वो समूह में जाकर के वो लोगों को विस्तार से बताती है और हम बैंक से कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके इसके बारे में उन लोगों को बताया जाता है। कृत्रिम आभूषण बनाने का, हाथ में, कान में, नाक में, गला में, पैर में वो पहनते हैं, वो सब चीज का प्रशिक्षण दिया गया है। मुर्गी पालन का, गाय पालन का, बकरी पालन का, मतलब पशुपालन से खेतीबाड़ी से संबंधित अभी प्रशिक्षण। उसके बाद हमारे यहाँ महीना भर का भी प्रशिक्षण हो।
1: प्रशिक्षण लेने के लिए उन युवाओं को क्या करना हो, कैसे आपसे जुड़ेंगे?
0: हमसे जुड़ने के लिए सीधा RCT आ सकते हैं। यहाँ का पूरा पता है साकेतपुरी, जो नीलांबर पीतांबर चौक के समीप है। हम गांव-गांव में, पंचायत पंचायत में, ब्लॉक ब्लॉक में जाकर के जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। JSLPS का जो भी ऑफिस है, ब्लॉक ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, आपका क्लस्टर ऑफिस है, वहां पे भी आप जाकर के JRP दीदी से संपर्क करके वो हमारा एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, से बात करके हमारा फॉर्म ले सकते हैं और ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है।
1: इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग के नाम से ये संचालन हो रहा है अभी, तो उन युवाओं को क्या क्या दस्तावेजों के साथ आपके पास या आपके कार्यालय आना होगा?
0: मेरे पास प्रशिक्षण लेने के लिए जो मूलभूत दस्तावेज है, पहला आधार कार्ड उनका होना चाहिए। अच्छा। उसमें उनका उम्र 18 साल से 45 साल के बीच में अंकित होना चाहिए।
1: ठीक।
0: दूसरा है आपका BPL नंबर का, या BPL जो आपको प्रमाणित करता है कि आप BPL परिवार से। तीसरा चीज है आपका शैक्षणिक योग्यता कितना है। चौथा चीज है 4 पासपोर्ट आकार का फोटो। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के लिए, अलग अलग ट्रेड के लिए आपको अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की जरूरत पड़ता है। जैसे 30 दिन वाला प्रोग्राम के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। बाकी कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित आपको कम से कम पढ़ना लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और आप एग्जाम में पास हो जाएं। एग्जाम परीक्षा जो पास करते हैं उन्हीं को प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ से सर हम आपको बताते हैं, 2 प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक तो होता है कि जो ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का कार्यक्रम का प्रतिभागी हुए, प्रतिभागी प्रमाण पत्र दिया जाता है। दूसरा होता है कि जो परीक्षा में पास करते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेसर द्वारा, स्किल इंडिया के द्वारा उसको एक प्रमाण पत्र आता है। वो हमें, हम उसको प्रिंट नहीं करते हैं, वो वहीं से आता है और उनको हम देते हैं। हाँ, परीक्षा पास करने के उपरांत
1: इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है उन प्रशिक्षकों को। वे अभ्यर्थी जो यहाँ सीखने आते हैं, युवा या महिलाएं, तो सीखने के बाद मन में इच्छा होती है कि क्यों ना अपना स्वरोजगार करें, क्योंकि सीखने का मतलब यही है, या तो कहीं रोजगार करें या तो अपना खुद का स्वरोजगार करें। तो क्या इंडियन बैंक जो है किस तरह से इनकी मदद करती है?
0: इंडियन बैंक का मुख्य उद्देश्य सर, जैसा कि हमने पहले बताया था, स्वरोजगार।
1: अच्छा।
0: ये स्वरोजगार ही करना है, इसमें आपको कहीं प्लेसमेंट या नौकरी के लिए आपको ये प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो ये पहला समझना है कि हमको इस प्रशिक्षण लिए है वो स्वरोजगार के लिए, इसे या तो खुद का रोजगार करना है। अगर आपके पास पूंजी है, खुद का पूंजी है, तो जिस क्षेत्र में आप प्रशिक्षण लिए हैं उसी चीज को आप स्वरोजगार के रूप में अपना अपने घर जाकर के, घर बैठे आपको करना है, कहीं बाहर में नौकरी के लिए नहीं भेजना। दूसरा चीज, अगर पूंजी आपके पास नहीं है तो हम उन्हें प्रशिक्षण के दौरान ही उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपके पास पूंजी अपना है या नहीं है। अगर पूंजी नहीं है तो आप हमारे यहाँ आवेदन दे दीजिए ऋण के लिए, आपको कितना ऋण की आवश्यकता है वो भी आप दर्शा दीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चिट्ठी बनाएंगे RCT का, अपना जो लेटर हेड होता है हमारा उसमें, और हम थ्रू हजारीबाग के LDM के थ्रू उसके सेवा क्षेत्र के बैंक में उस एप्लीकेशन को, आवेदन को भेज देते हैं कि ये हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेके जा रही हैं, इनको ऋण की आवश्यकता है, ये हमें बताएं, आप इन्हें इसको ऋण मुहैया कराएं ताकि ये अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके।
1: हर जिले में चल रहा है, लेकिन उनके प्रायोजक या तो उनके देखरेख करने वाले बैंक अलग अलग होते हैं।
2: अलग अलग मॉनिटरिंग बैंक,
1: हाँ, मॉनिटरिंग बैंक जो होते हैं सो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ फिलहाल हजारीबाग जिले में, और ये जो है नीलांबर पीतांबर चौक के समीप जो है सदानंद मार्ग में साकेतपुरी में जो चल रहा है, वहाँ इंडियन बैंक द्वारा देखरेख में ये चल रहा है। युवाओं को ये यहाँ प्रशिक्षण दिए, क्या अनुभव करते हैं आप, उनके जीवन में क्या बदलाव होता है?
0: हम यहाँ 2013 से पोस्टेड हैं और करीब यहाँ से प्रत्येक वर्ष 700 से 800 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेते हैं। सर, जब हम फील्ड में जाते हैं, मैंने पहले बताया कि 2 साल तक इसको बैक सपोर्ट करते हैं हम लोग।
1: अच्छा।
0: और फील्ड में जाकर के फॉलो अप करते हैं, देखते हैं जाकर के क्या कर रहे हैं, वहां जाते हैं।

0: अपने घर में पढ़ लिख करके बैठे हुए बेरोजगार हैं, उनसे हम यही चाहेंगे कि अपने इच्छा के अनुसार किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षण लेकर के आप अपना स्वरोजगार स्थापित करें। युवाओं से खास करके जो 18 से 45 साल के बीच में घर में बैठे हैं, वो प्रशिक्षण करके कुछ ना कुछ करें और सरकार का सहयोग करें।
1: तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: RCT यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो कि हर जिले में संचालित है, इसकी स्थापना के पीछे ग्रामीण क्षेत्र में BPL ग्रामीण गरीब परिवारों में बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जुड़ना है, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़े होकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। तो सुनते हैं इस योजना के लाभुकों से उनकी राय और जानते हैं उनकी आत्मनिर्भरता की कड़ी को।
3: मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी पासवान है। हम RCT से सिलाई के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग वहाँ से सारा कुछ सीखे हैं। पेटीकोट हो गया, ब्लाउज हो गया, फ्रॉक हो गया, नाइटी हो गया, बेबी फ्रॉक हो गया। उसके बाद हम लोग वहीं का एप्रन सिलाई कर रहे हैं, जो यूनिफॉर्म है वहाँ का।
1: क्या क्या सुविधाएं दी गई थी उस समय जिसमें आप सीख रही थी?
3: वहाँ से सारा सुविधा हम लोग को मिला था, जैसा कि कपड़ा वगैरह मिला था, सारा चीज, सिलाई का मशीन भी वहीं का था, खाना वगैरह भी मिलता था, शाम को चाय बिस्किट सारे कुछ, मैंने सुविधा में सब कुछ मिला वहाँ से हम लोगों को।
1: सीख जाने के बाद क्या किया आपने? देख रहे हैं कि आपके पास कई सिलाई मशीन है, तो यहाँ तक का सफर कैसे तय किए आप?
3: हम लोग कुछ लोन भी लिए और फिर अपने से भी कुछ अपना अपना सब पूंजी लगाए और फिर हम लोग यहीं पे, मैंने सर ही बताए कि आप लोग वहाँ का यूनिफॉर्म से लिए, तो उसी के माध्यम से हम लोग अभी सिलाई कर रहे हैं।
1: तो कहाँ कहाँ से काम आता है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई महिलाएं जो हैं आपस में ग्रुप बना के बैठी हैं।
3: सर जैसे तो अभी RCT का हम लोग एप्रन सी रहे हैं। अच्छा। फिर अगर हम लोगों कहीं से ब्लाउज का मिल गया ऑर्डर तो वो भी कर लेते हैं, पेटीकोट का मिल गया वो कर लेते हैं, कोई ऑर्डर दे दिया कोई अगल बगल से भी दे दिया वो लोग अभी ले लेते हैं, नाइटी वगैरह हो गया या फिर नाइट ड्रेस हो गया, मैंने जितना सिलाई वाला है हम लोग सब ऑर्डर ले लेते हैं और फिर हम लोग सब मिल के सीते हैं।
1: एक और दीदी हमारे साथ है, तो क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम किरण देवी है। यहाँ आके एप्रन सिलते RCT का।
1: आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
4: बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम लोग समूह में जुड़े, समूह के द्वारा JRP दीदी के द्वारा से फिर RCT का पता लगा, वहाँ से फिर हम लोग सारा सुविधा मिला, सिलाई के दौरान कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ और ना कमी हुआ। उसके बाद जब हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो गया तो फिर हम लोग ग्रुपिंग किए कि हम लोग को अब एप्रन सिलना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग 10 महिला ग्रुप बनाए, फिर हम लोग को सैंपल मांगा गया, सर बोले कि नहीं सैंपल देना है, तो वहाँ के लिए फिर आप 2 एप्रन सिल के दिखाएं, सर बोले अच्छा है। उसके बाद फिर से ऑर्डर आया 50 का, उसके बाद सब सिल के पहुँचाए RCT, वहाँ से फिर हम लोग को पैसा मिला और जो पैसा आया जो हम लोग को कमी था उस पैसा को हम लोग उस जगह पे यूज किए, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि हम भी अपने पैर पर खड़ा होके कुछ आगे बढ़े।
1: एक और दीदी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम कुलसुम खातून है।
1: RCT यानी कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में कैसे पहुंची आप लोग?
5: हम लोग JSLPSC के द्वारा ग्रुप बनाए थे। अच्छा। तो वहीं से हम लोग पहुंचे, JRP दीदी हम लोग को बताई तो वहीं हम लोग पहुंचे। उसके बाद फिर 1 महीना का ट्रेनिंग हम लोग लिए, उसके बाद अपना आजीविका को बढ़ाने के लिए हम लोग को जो सुविधा वहां से मिला उसी से हम लोग आगे बढ़े।
6: मेरा नाम मंजू देवी हुआ। काम मिलता हम लोग को थोड़ा अच्छा भी लगता है करने में कि और हम लोग को काम मिला तो हम लोग काम करके थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, अपना आर्थिक सुविधा को मतलब आर्थिक स्थिति को सुधार में लाएंगे और उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जैसे घर से हम लोग बाहर निकलते हम लोग बहुत खुशी होती है कि चलो हम लोग अपने साथ जा रहे हैं, सारे ग्रुपिंग मिल करके हम लोग काम करेंगे, तो हम लोग को खुशी बहुत ज्यादा होती है कि हम लोग घर से बाहर निकल सकते हैं और अपना पैर पे खड़े हो सकते हैं।
1: पूर्णिमा पासवान जी से बात करते हैं कि किस तरह से ये जो है महिलाओं की स्थिति को पहले जो देखे थे और अभी जो देखते हैं, क्या आत्मनिर्भरता आती है उनके चेहरे में, उनकी आंखों में?
3: पहले से तो चेंजिंग है, पहले इन लोग के पास भाड़ा तक नहीं रहता था, अब तो खुद से अपना पैसा लगा के ये लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो पहले किसी को मोहताज रहना पड़ता था, जैसे हो गया ससुर से मांग लिए या हस्बैंड से मांग लिए, लेकिन अब इन लोग को मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये लोग के पास खुद आ गया है इतना कि ये लोग अपना आना जाने वाला ये कर सकते हैं। ये लोग सब है कि दूर दूर से है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह के सब है। अच्छा। कोई ओरिया से आती है, कोई बहरी से आती है, कोई लालपुर चौक से आती है, एक सिंदूर से है, एक सिरसी से है और एक हुड़हुड़ू से है। हम ही लोग सब बैठ के एक जगह एक दिन मीटिंग रखे और फिर हम लोग बोले कि नहीं हम लोग को कुछ करना चाहिए, ऐसे सिलाई सीख के ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं है, ये सोच के हम लोग सोचे कि नहीं हम लोग जब सिलाई सीखे हैं तो उसको कुछ हम लोग करके दिखाएंगे, ये सोच के हम लोग आगे बढ़े। थैंक यू सर।
2: इस तरह के कई कार्यक्रम निशुल्क इस RCT संस्थान के माध्यम से हर जिले में चलाया जा रहा है, तो उम्मीद है आप इस योजना का लाभ जरूर लेंगे।

0: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स।
1: यूं ही तुम

सच्चा झूठा फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। दोस्तों, फिल्मी गीतों की दुनिया भी बहुत खूबसूरत होती है ना। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर एक नई ताजगी, एक नई याद और एक नया एहसास दे जाते

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में शक्ति फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। दोस्तों, सदाबहार गीतों की एक और खूबी है कि इन्हें सुनने के लिए किसी खास उम्र की जरूरत नहीं होती। नई पीढ़ी हो या पुरानी, इनकी धुन हर दिल को छू लेती है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना सिलसिला फिल्म से। कितने खूबसूरत होते हैं दोस्तों ये पुराने गीत। इनमें सिर्फ संगीत नहीं होता बल्कि उस दौर की खुशबू, रिश्तों की गर्माहट और जिंदगी के अनगिनत रंग भी छिपे होते हैं। ढोंगी फिल्म का ये गाना है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में।

किशोर कुमार आरडी बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाजों को आप सुन रहे थे सत्य पे सत्ता फिल्म के संगीत में। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: यह है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनवा रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।
1: तार सप्तक, मंदिर सप्तक,

ये गाना है नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, ईश्वर फिल्म से लिया हुआ ये गाना है, सुनना चाहा है आप सभी ने। चिपाकला बड़का गांव से आप हैं बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, दिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मिणी, प्रियंका और दीपिका, और पटेल नगर मलोट से आप हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया।

ईश्वर फिल्म से लिया हुआ ये गाना आपने सुना और अब सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में कार्यक्रम का ये अगला गाना। फिल्म का नाम है घर और सुनना चाहा है आप सभी ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और पंचायत ग्राम बठेना से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा और रेखा धनेश्वरी वर्मा, साथ ही सुजान वर्मा, सुहाद्र वर्मा, आयुषी, कृति वर्मा, सारा गांव से

पराया धन फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, और एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज़ में जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गाना सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। पंच मंदिर रोड से आप हैं नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून आरजू, कहकशा परवीन आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू। और ये अगला खत है पतरातू से आप हैं। बेसिल खलको सेसिल खलको मधु रितु रचना मीतु श्वेता पल्लवी रोहित प्रवीण सचिन नदीम ललिता और इनके परिवार के अन्य सदस्य।

आशा भोसले की आवाज में शान फिल्म का ये गाना था आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। झुमरी तिलैया से आप है जगन्नाथ प्रसाद साहू और नवा टोला भीखनपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान। और अब कार्यक्रम आपकी चाहत में अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको राहत फतेह अली खान की आवाज में। सुल्तान फिल्म का ये गाना है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। सरोज चौक अमरावती से आप है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, शालिया, सुएब और इनके परिवार के अन्य सदस्य। माटापारा धुरा ब्रांदा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू।

पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में सुनिए मोहरा फिल्म से ये गाना आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। आप है कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार दिल्ली शहर मोरी गेट से, और खरसावां से आप हैं सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और राकेश नायक।

रमेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया गोलू और इनके परिवार के अन्य सदस्य मेन रोड बड़का गांव से सुनना चाहा है तेरे नाम फिल्म का ये गाना।

0: दोस्तों, ये गाना आज बस इतना ही। फिर समय मिलने पर हम ये गाना आपको पूरा सुनवाएंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम आपकी चाहत यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:44 और 52 सेकंड। कुछ ही देर में आप सुनेंगे ये समाचार संध्या और रात 9 बजे अंग्रेजी समाचार न्यूज एट 9 प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर

0: चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के

0: एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
2: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं, और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है, और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
4: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयीय समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के

0: उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई।

0: भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे, और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूं छोड़ दो से।

एन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एन सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहां उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहकल से।

पढ़ाई खत्म करके केएन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा

कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आई। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है, पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गई। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के एन सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, पर एन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के एन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के एन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के एन सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

के एन सिंह को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदन लाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। के एन सिंह ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने के एन सिंह को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सोनार संसार का हिंदी संस्करण बना रहे थे। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए के एन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदन लाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। A.R. कारदार को कुंदन लाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और के एन सिंह जम गए। के एन सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलकें न झपकाना, कोट, पैंट, टाई, हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के एन सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

0: अपने इंटरव्यूज में वो जग्गा डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भूलू का किरदार निभाया था।
1: अरे जिंदा तो है अभी। देख पंचनारे के 8-10 फूल तोड़ ला और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा। लेकिन देख बूटी जा चुका जला। हाँ जल्दी से आ।

0: भाई ये काम तो खत्म हो चला, तू जरा अच्छी तरह से ध्यान रखियो, हाँ ये लिप सूख जाए तो और लगा देना, मैं शाम को आऊंगा। जरा मेरा हाथ उठाइयो भाई।
1: ओहो मगर कहाँ जाओगे वैजी से इस तरह छोड़कर?
0: नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ, अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया।
1: नगीने शादी? बैजी
0: अरे कुछ कहेगा भी?
1: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती।
0: अरे जालिम, तुझसे शादी करके कौन अपने हड्डियों को चूर कराएगी?
1: अभी पक्की नहीं तो कच्ची शादी करा दो, क्यों बैजी?
0: अच्छा अच्छा इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी।
2: बैजी अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हरज
0: है? ठीक है भेज देंगे।
1: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी?
0: बस ये कोई 15-20 दिन।
1: बैजी भगवान देखो जरूर है,
0: तो?
1: देख लो दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहु मेरे लिए।
0: हाँ भाई सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी।
2: बैजी है थोड़ी खूबसूरत क्यों?
0: हाँ भाई ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो कुका के परी को उठा लाए।
3: शक्ति सामंत को के एन सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई ना कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर, बद्री प्रसाद की भूमिका। फिल्म हावड़ा ब्रिज, प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, के एन सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के एन सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर के एन सिंह एक चोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अजय सुना सरदारा की आने

0: वाह, अरे वाह वाह वाह वाह।
1: शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के एन सिंह की यादगार फिल्म है।

चिन्नप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में। जहां कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरुदत्त के साथ काम किया, वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई। यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के एन सिंह की आखिरी फिल्म बन गई।

0: शूद आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बजे हैं।

बॉबी बर्मन की आवाज को आप सुन रहे थे। फिल्म था जमाने को दिखाना है। और अब सुनिए प्रोग्राम का अगला गाना, कुर्बानी फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

वक्त फिल्म का ये गाना था आशा भोसले की आवाज में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गाना राजा और रंक फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की।

ब्यूटी फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर की आवाज में। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम रजनीगंधा यही समाप्त होता है।

चल रहा है कार्यक्रम एक फिल्म से और साथियों आज की फिल्म है मधुमती। 1958 में ये फिल्म आई थी, निर्देशक थे विमल रॉय। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी वैजयंती माला, दिलीप कुमार, प्राण और जॉनी वॉकर ने।

फिल्म से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज की फिल्म है मधुमती। ये फिल्म आई थी साल 1958 में। 1958 में अन्य पुरस्कारों के साथ साथ फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी इस फिल्म को मिला था और कहा जाता है कि ये शायद उस समय की पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें वैजयंती माला ने तीन तीन रोल निभाए थे। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम में ये अगला गाना।

यथा कार्यक्रम एक फिल्म से राज की फिल्म थी मधुमति। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है।

0: और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
0: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्केन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षाकर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
0: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir